0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला

बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026 प्रातः के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड

0: के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज़ वेल।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलमारू चैनल से बोल रहे हैं। मिलिम्बर 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 MHz पर। प्रातः की 6:05 हो चुके हैं और प्रस्तुत है आज का विचार। आज का विचार लेकर आ रहे हैं श्री प्रमोद कुमार शर्मा। विषय है धर्म परिवर्तन पर बापू के विचार।
4: किसी व्यक्ति का धर्म अंततः तो उसके और उसके रचयिता के बीच की चीज है, जिससे किसी और को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आज जो मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं, वह इसलिए कि मैं सत्य की अपनी खोज में आपकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता हूं, और इसलिए कि बहुत से ईसाई मित्र ईसा के उपदेशों के बारे में मेरे विचारों में दिलचस्पी रखते हैं। अतः यदि मेरे सामने केवल सर्मन ऑन द माउंट और उसकी मेरी अपनी व्याख्या ही होती तो मैं ये कहने में नहीं हिचकता कि हाँ मैं ईसाई हूं, लेकिन मैं

0: जानता हूं कि इस समय यदि मैं ऐसी कोई बात कहूंगा तो इससे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाने का अंदेशा है। मैं झूठा दावा करने का अपराधी हो जाऊंगा, क्योंकि तब मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ईसाई धर्म की मेरी अपनी व्याख्या क्या है और आपके सामने ईसाई धर्म के बारे में अपने विचार बताने में मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि ईसाई धर्म के नाम से जो बहुत कुछ चीजें चलती है वे सर्मन ऑन द माउंट के विरुद्ध है। कृपया मेरे शब्दों पर ध्यान दें। मैं इसमें ईसाई आचरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईसाई मान्यताओं की, ईसाई धर्म की उस स्वरूप की बात कर रहा हूं जिस रूप में पश्चिम उसे समझता है। मैं ये जानता हूं और मुझे इसका बहुत दुख है कि सभी जगह मान्यताओं के मुकाबले आचरण में बहुत कमियां हैं। लेकिन ऐसा मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं अपने अनुभवों से जानता हूं कि हालांकि मैं अपने कथनों के अनुसार आचरण करने की जीवन में हर क्षण कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे कथन के मुकाबले मेरे आचरण में कमी रह जाती है। इसलिए ये बात आलोचना की नीयत से कहने का मेरा कोई मंशा नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने अपनी बुनियादी कठिनाइयां रख रहा हूं। जब 1893 से मैंने एक विनम्र विद्यार्थी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में ईसाई साहित्य पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये ईसाइयत है? और मुझे हमेशा वेदों का यह उत्तर मिला, नहीं थी, नहीं थी, ये नहीं, ये नहीं। और मेरे अंतर की गहराइयों से आवाज आ रही कि मैं ठीक हूं, मैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक विनम्र व्यक्ति होने का दावा करता हूं, और मुझे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो ईश्वर मुझे शक्ति देगा कि मैं उसके अस्तित्व से इनकार न करूं, बल्कि जोर देकर कहूं कि वो है। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह है और उसके सिवा कोई नहीं, ईसाई भी वही बात कहते हैं और हिंदू भी, और अगर कह सकूं तो बौद्ध लोग भी यही बात कहते हैं, हालांकि भिन्न शब्दों में। हम ईश्वर शब्द की अलग अलग व्याख्या भले ही करते हों, उस ईश्वर की जिसमें हमारे यह पृथ्वी ही नहीं ऐसी करोड़ों अरबों पृथ्वियां समाई हुई है, हम तुच्छ रेंगने वाले जीव जिन्हें उसने इतना असहाय बनाया है कि हम उसकी महानता, उसके असीम प्रेम, उसकी अगाध करुणा को कैसे नाप सकते हैं। उसकी करुणा ऐसी है कि जब मनुष्य धृष्टतापूर्वक उसके अस्तित्व से इनकार कर देता है, अन्य मनुष्यों का गला काटता है, तो वो इसे ही बर्दाश्त कर लेता है। जो ईश्वर इतना क्षमाशील, इतना दिव्य है, उसकी महानता को हम कैसे नाप सकते हैं। इस प्रकार हम भले वे ही शब्द उच्चारित करें, लेकिन हम सबके लिए उन शब्दों का एक ही अर्थ होना जरूरी नहीं, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने भाषणों या लेखों के द्वारा शुद्धि अथवा तबलीग या धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है। हम अपने जीवन में उदाहरण के द्वारा ही वास्तव में वैसा कर सकते हैं। हमारा जीवन औरों के लिए खुली किताब की तरह हो, कितना अच्छा हो कि मैं मिशनरी मित्रों को अपने मिशन के प्रति यह दृष्टि अपनाने के लिए राजी कर सकूं। तब न कोई अविश्वास होगा, न संदेह, ईर्ष्या और न ही झगड़े ही होंगे।
1: आज का विचार सुना आपने, विषय था धर्म परिवर्तन पर बापू के विचार। वाचक स्वर श्री प्रमोद कुमार शर्मा के थे। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ करते हैं तुम बड़े वीर बजरंगी हनुमान, शकुंतला श्रीवास्तव के स्वर में।

उषा अत्रेय के भक्तिमय स्वर में सुना आपने जय श्री राधिका रस भरी। इसी के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बालकांड दोहा संख्या 229 के आगे से दोहा संख्या 232 तक का सस्वर पाठ।

उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं, अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निम राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निम ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं।

गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है।

रामचरितमानस गान में आज हमने आपको सुनवाया बालकांड दोहा संख्या 229 के आगे से दोहा संख्या 232 तक का सस्वर पाठ। मुख्य स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के थे और संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:41 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, बात करें हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, तो प्रातः 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा में रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात्रि 10 बजे अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसमें आज के कलाकार रहेंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी। कर्नाटक वीणा वादन प्रस्तुत होगा शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक। ये दोनों ही कार्यक्रम यानी कि संस्कृति भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोता, हमारी इसी सभा में आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे खेती की बातें। प्रातः 6:45 पर विषय रहेगा मूंगफली की फसल में पौध संरक्षण, वाचक स्वर श्री दीवान दान रत्नु के होंगे। इसके बाद 6:50 पर आप सुनेंगे लोक भजन। सुप्रभात कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रातः 7 बजे, जिसमें आपको सुनाएंगे एक वार्ता, विश्व जनसंख्या दिवस, चुनौतियाँ, समाधान और हमारी जिम्मेदारी। वार्ताकार होंगे श्री फूलचंद बाठिया। हमारी प्रातःकालीन सभा में 7:30 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। फिल्म संगीत फिर से आप सुनेंगे प्रातः 10 बजे, इसके बाद 12:40 पर और 2:30 पर भी आप फिल्म संगीत का लुत्फ ले पाएंगे। कार्यक्रम सौरभ में सुनेंगे हिंदी कहानी गौरी गाय, कहानीकार हैं श्री इंद्रजीत कौशिक। समय रहेगा 8:30 पर। सुगम संगीत आप सुनेंगे प्रातःकालीन सभा में 8:45 पर और 12:10 पर। लोक संगीत का समय रहेगा 9:10 का, जबकि हेलो बीकानेर कार्यक्रम आप सुनिएगा, जो कि है फोन इन पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम, प्रातः 11 से 12 बजे तक। आज की सूत्रधार रहेंगी श्रीमती कोमल तनेजा। दोपहर में महिला जगत कार्यक्रम होगा हमेशा की तरह 1:05 पर, जिसमें वार्ता सुनिएगा जनसंख्या संतुलन एवं जीवन की गुणवत्ता। वार्ताकार होंगी श्रीमती देवेंद्र कौर। सांध्यकालीन सभा में युववाणी हमेशा की तरह संध्या 5:05 पर। आज की बात का विषय रहेगा एआई पर बढ़ती निर्भरता। फिल्म संगीत सुनिएगा सांध्यकालीन सभा में 6:05 पर। इसके बाद फिल्म संगीत होगा 9:15 पर। ग्रामीण जगत सुनिएगा गूंजे गांव गुआड़ कार्यक्रम के साथ 7 बजे, जबकि बीकानेर दर्पण का समय रहेगा रात्रि 8 बजे से। श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है मूंगफली की फसल में पौध संरक्षण, वाचक स्वर श्री दीवान दान रत्नू के हैं।
1: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं मूंगफली की फसल में पौध संरक्षण। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में प्रमुख रूप से जो रोग लगते हैं वो है कातरा, दीमक, क्राउन राट, मूंगफली कॉलर रट, मकड़ी और पीलिया रोग। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आइए हम बात करते हैं मूंगफली में कातरा नियंत्रण। किसान भाइयों, मानसून की बरसात होते ही कातरे के पतंगों का जमीन से निकलना शुरू हो जाता है। यदि इन पतंगों को नष्ट कर दिया जाए तो फसलों में कातरे की लट का प्रकोप कम हो जाता है। इसकी रोकथाम प्रकाश पास के उपयोग से संभव है। इसके लिए पतंगों को प्रकाश की ओर आकर्षित करने हेतु खेत की मेड़ों पर चारागाह व खेतों में गैस लालटेन या बिजली का बल्ब जलाएं और इनके नीचे मिट्टी के तेल की एक मिले पानी की एक परात रखें, ताकि रोशनी पर आकर्षित होकर पतंगे पानी में गिर कर नष्ट हो जाए। इसके अलावा किसान भाइयों, कातरे की नियंत्रण के लिए खेतों में घास और कचरा जला सकते हैं। जगह जगह पर घास और कचरा एकत्रित कर इसके पतंगे आकर्षित और रोशनी से आकर्षित होकर

0: जल कर नष्ट हो जाए। कातरे की छोटी अवस्था खेतों के पास उगे जंगली पौधे और जहां फसल उगी हुई हो वहां पर अंडों से निकली लट्टों और उनकी प्रथम और द्वितीय अवस्था पर क्विनोलफॉस 10% मिथाइल पेरोथियन 2% या मेलाथियन 5% या फेनवेलर 0.4% चूर्ण का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। बंजर जमीन या चारागाह में उगे जंगली पौधों से खेतों के फसलों को लटके आगमन को रोकने के लिए खेत के चारों तरफ खाइयां खोदे। खाइयों में क्विनोलफॉस 1.5% या मिथाइल पेरोथियन 2% या मेलाथियन 5% चूर्ण भुरकाव देवे ताकि खाई में आने वाले लट्टे नष्ट हो जाए। या कातरे को नियंत्रण के लिए कातरे की खेतों में लट्टे चुन चुन कर वो एकत्रित कर 5% मिट्टी के तेल मिले पानी में डालकर नष्ट कर सकते हैं। मिथाइल पेरोथियन 2% या फॉसलॉन 4% या कोरोबोरिल 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर से भुरकाव कर सकते हैं। जहां पानी उपलब्ध हो वहां डाइक्लोवॉस 76 EC 300 मिलीलीटर या मिथाइल पेरोथियन 50 EC 750 मिलीलीटर, क्विनोलफॉस 25 EC 625 मिलीलीटर या क्लोरोफॉस 20 EC या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, दीमक की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में दीमक का प्रयोग दिखाई देने पर 4 लीटर क्लोरोफॉस 20 EC प्रति हेक्टेयर सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। मोइला मिथाइल पेरोथियन 2% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या मेलाथियन 50 EC 1.25 लीटर या मिथाइल पेरोथियन 50 EC 750 मिलीलीटर, मिथाइल डेमोटेन 25 EC 1 लीटर दवा का पानी में घोल बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे दीमक की रोकथाम हो सकती है। क्राउन रोट, इसके बचाव के लिए किसान भाइयों 3 ग्राम थायरिम दवा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करके उसके बाद में बीज बुआई में काम में लेवें। मूंगफली में कॉलर रोट का भी प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता है, यह भी एक रोग मूंगफली में प्रमुख है। इसके नियंत्रण हेतु मित्र फफूंद ट्राइकोडोर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार व 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुआई पूर्व भूमि में देवे। 100 किलोग्राम गोबर के खाद में मिलाकर भी दे सकते हैं। और किसान भाई, मकड़ी का प्रकोप भी देखने को मिलता है, इसके लिए हम गंधक चूर्ण 16 से 20 किलो प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करें। और टिक्का रोग के फसल उगने के 40 दिन बाद दिखाई देता है। इस रोग से पत्तियों पर मटियले रंग के गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम हेतु किसान भाइयों, देखते ही इस रोग को कार्बोडोजिम अथवा 0.5 ग्राम लीटर पानी की घोल अथवा 1.5 किलो मेंकोजोब का प्रति हेक्टर छिड़काव करें। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल में ऐसे 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। मूंगफली में टिक्का व अल्टोरनेरिया रोग की रोकथाम हेतु पाइरा क्लोरोस्ट्रोबिन इक्का पॉक्सिक नोजोल 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना बहुत ही प्रभावी पाया गया है। मूंगफली में पीलिया रोग भी कभी कभी देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों 3 साल में एक बार बुआई से पूर्व 250 किलो जिप्सम भूमि के परीक्षण के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम हरा कशिश प्रति हेक्टर डालें। इसके अभाव में गंधक के तेजाब को 0.1% घोल का फसल में फूल आने से पहले एक बार पूरे फूल आ जाने के बाद दूसरी बार छिड़काव करें। पीलिया का नियंत्रण किया जा सकता है। पीली की रोकथाम के लिए बुआई के 40 से 50 दिन पर हराकशिश 0.5% का छिड़काव करें। इस घोल में चिपकना पदार्थ जैसे साबुन आदि अवश्य मिलावें। खुदाई मूंगफली पकने का समय अक्टूबर अंत से नवंबर मध्य तक है। फसल पकते समय ही हरी रहती है, अतः खोद कर देख लेवें कि फलियां पक गई है या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हो तो पत्तियां पीली पड़ जाए तो खुदाई कर लेवें।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुना, विषय था मूंगफली में पौध संरक्षण। वाचक स्वर थे श्री दीवानदान रत्नू के। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गणपतलाल डांगी और पार्टी के स्वर में एक लोक भजन।

0: गणपत लाल डांगी और पार्टी के स्वर में अभी आपने सुना लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन्नस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यतः। प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः क्रीडा क्षेत्रस्य विशिष्ट व्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति। उभय देशयोः मध्ये सुदृढ जनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण असौ अद्य न्यूजीलैंड देशे विशालं प्रवासी भारतीय सम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया देशयोः सफल यात्रानन्तरं स्वीय त्रिराष्ट्र यात्रायाः तृतीयम् अन्तिमं च चरणम् उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कृतवान्। भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे असौ स्वागत समारोहे

भोर की शांत वेला में जब सूरज क्षितिज पर अपनी सुनहरी आभा बिखेरता है, उसकी बूंदें पत्तों पर मोतियों सी झिलमिलाने लगती हैं। देखा है कभी आपने? और जब मंद समीर का एक झोंका जैसे नई उम्मीदों का संदेश लेकर आता है और प्रकृति का हर स्वर कहता है कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। हर सुबह केवल समय का परिवर्तन नहीं होती, यह विचारों के नवीनीकरण, सपनों के विस्तार और संकल्पों के पुनर्जागरण का भी नाम है।

मंगल कामनाओं और भावनाओं के साथ मैं मालकौन से आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम सुप्रभात में। तो श्रोताओं, जैसा मैंने कहा कि आज का दिन कल से कुछ बेहतर बनाने का एक अवसर है, और ये अवसर है अगर कोई कल रूठ गया है तो उसे आज मना लीजिए। और हम कोशिश करते हैं आपको ऐसा ही एक प्यारा सा गीत सुनाने की, क्योंकि हम बैठेंगे नाल नाल और करेंगे दिल दियां गल्ला।

श्रोताओ, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिस पर बचपन से हम लेख लिखते आए हैं, हिंदी में चाहे लेख प्रतियोगिताओं में। श्रोताओ, प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की पहल पर वर्ष 1989 में की गई थी। इसके पीछे प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को मिली, जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंचने का प्रतीकात्मक दिन मनाया गया था। इसके बाद यह महसूस किया गया कि यदि जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई और आज विश्व की जनसंख्या 8 अरब से भी अधिक हो चुकी है और भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, हम जानते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, वो 1.9 के आसपास आ चुकी है, जो कि जो एग्जैक्ट प्रतिस्थापन दर होती है 2.1, उससे भी नीचे पहुंच चुकी है। यानी कह सकते हैं कि हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। वहीं राजस्थान की कुल प्रजनन दर जो है वो 2.1 और बीकानेर की इससे थोड़ी ही अधिक है। तो कहीं ना कहीं हम स्थिरता की ओर जा रहे हैं। और इसके साथ एक और विषय है कि ये स्थिरता एक जैसी नहीं है, किसी राज्य में अलग है TFR, किसी राज्य में अलग है। तो हमें आवश्यकता है अभी भी अपने संसाधनों और जनसंख्या के संतुलन को बनाए रखने के, तो इस दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक है और रहेंगे, हमें जारी रखने चाहिए। तो विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की शिक्षा, विवाह की उचित आयु, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, परिवार नियोजन के साधनों तक सहज पहुंच तथा जन जागरूकता ही जनसंख्या स्थिरीकरण की सबसे प्रभावशाली कुंजी है। कहते हैं, छोटा, स्वस्थ और शिक्षित परिवार न केवल परिवार की खुशहाली का आधार है बल्कि विकसित भारत की मजबूत नींव भी है। तो जानिए, विश्व जनसंख्या दिवस का अवसर है, जो परिवार कल्याण के साधन होते हैं, आजकल तो बहुत ही शानदार साधन आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं सरकार द्वारा। अगर आप 2 बच्चों में अंतराल चाहते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि पहला जो शादी का समय है उसी से हम शुरुआत कर दें कि लड़की की आयु 18 और लड़के की 21 से कम ना हो। शादी के 2 साल तक थोड़ा करें इंतज़ार, उसके बाद करें प्लान, और उसके बाद जब भी आप बच्चा चाहें, बच्चा आपको मिल, आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का रहे अंतराल, और ये जो अंतराल है इसके लिए आपके पास कई साधन हैं, चाहे वो गर्भ निरोधक कंडोम हो, चाहे आजकल के बेहतरीन गोलियां माला एन और छाया जैसी। उसके साथ अब आ गया है अंतरा इंजेक्शन, एक बार लगवाएं 6 माह तक कोई टेंशन नहीं गर्भ धारण की। तो ऐसे बेहतरीन उपचार साधन उपलब्ध हैं हमारे सिस्टम में, और जब हम आप समझें कि हमारा परिवार पूरा हो गया है, हम अपने परिवार को वहीं रोकना चाहते हैं, तो हमारे पास स्थायी साधन भी है, चाहे वो महिला नसबंदी हो और चाहे

0: पुरुष नसबंदी, और पुरुष नसबंदी की तो क्या कहें, 5 मिनट में NSV करवाएं और फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। महिला का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, जबकि पुरुष को कोई ऑपरेशन जैसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा सा एक कहना प्रोसीजर होता है जिसको हर पुरुष को अपनाना चाहिए, क्योंकि मर्द वही जो जिम्मेदारी निभाए। तो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हम बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक वार्ता। विश्व जनसंख्या दिवस, चुनौतियां, समाधान और हमारी जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं श्री फूलचंद बांठिया, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी की और संयोजन है श्री अमित सिंह का। तो सुनते हैं ये वार्ता, विश्व जनसंख्या दिवस, चुनौतियां, समाधान और हमारी जिम्मेदारी।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है, एक ऐसा दिन जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस नीली खूबसूरत धरती पर हमारी इंसानी तादाद कितनी बढ़ चुकी है, इसके पीछे के कारण क्या है और हमारी आने वाली नस्लों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आज हम किसी उबाऊ भाषण की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह इसी विषय की गहराइयों पर खुलकर और बहुत ही सहजता से बात करेंगे। श्रोताओं, इस विशेष दिन को मनाने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जुड़ी है जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। आज से कुछ दशक पहले 11 जुलाई 1987 उस दिन दुनिया के किसी कोने में एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वह कोई साधारण जन्म नहीं था। उसके जन्म लेते ही हमारी पृथ्वी की कुल आबादी ने इतिहास में पहली बार 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने उस दिन को 5 बिलियन डे घोषित किया। पूरी दुनिया के नीति निर्माता और वैज्ञानिक चौंक गए कि हम इंसान इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी चिंता और जागरूकता को दुनिया के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए साल 1989 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तय किया कि हर साल 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर हम आज की हकीकत पर नजर डालें तो हम दुनिया में 8 अरब का विशाल आंकड़ा भी काफी पीछे छोड़ चुके हैं, और अगर हम अपने प्यारे देश भारत की बात करें तो आज हम लगभग 143 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भी बन चुके हैं। आबादी बढ़ना तो तरक्की की निशानी है, लोग लंबा जीवन जी रहे हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, फिर भी इसे चुनौती क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न बिल्कुल उचित है। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति से शिशु मृत्यु दर घटी है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण लोगों की औसत आयु बढ़ी है, और यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन चुनौती तब पैदा होती है जब बढ़ती जनसंख्या के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी और अन्य संसाधनों का संतुलन नहीं बन पाता। इसलिए जनसंख्या तभी तक हमारी शक्ति है जब तक प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। सबसे बड़ा और पहला संकट जो हमारे सामने खड़ा है वह है जल संकट। इंसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन धरती पर मौजूद मीठे और पीने योग्य पानी की बूंदें उतनी ही है जितनी आज से सदियों पहले थी। आज देश के कई बड़े शहरों में गर्मियों के दिनों में पानी के टैंकरों के पीछे लंबी लाइनें लगती है। धरती के सीने को चीरकर जो भूजल हम निकालते थे उसका स्तर इतना नीचे जा चुका है कि अब कुएं और नलकूप दम तोड़ रहे हैं। बड़ा नुकसान हो रहा है हमारी जमीन और जंगलों का। इतने सारे लोगों के रहने के लिए मकान चाहिए, गाड़ियों के चलने के लिए चौड़ी सड़कें चाहिए, और सामान बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चाहिए। इसके लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों का सीना छलनी कर रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है, मौसम का मिजाज बदल चुका है। कभी भयंकर सूखा पड़ता है तो कभी बेमौसम इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि हंसते खेलते शहर बाढ़ में डूब जाते हैं। जलवायु परिवर्तन अब कोई किताबी बात नहीं।

इसे हम रोज महसूस कर रहे हैं। चलिए थोड़ी और गहराई में चलते हैं। बढ़ती जनसंख्या केवल पर्यावरण को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि यह हमारे समाज के ताने बाने और मानसिक शांति पर भी गहरा प्रभाव करती है। जब किसी देश में हर साल लाखों नए युवा अपनी पढ़ाई पूरी करके हाथ में डिग्री लिए रोजगार के बाजार में कदम रखते हैं और अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर उस गति से नहीं बढ़ पाते, तो समाज में बेरोजगारी का एक भयानक दौर शुरू होता है। बेरोजगारी अपने साथ अकेले नहीं आती, वह अपने साथ लाती है अत्यधिक गरीबी, कुपोषण, पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव। जब एक नौजवान को अपनी योग्यता के बाद भी काम नहीं मिलता, तो उसके भीतर का असंतोष कभी कभी उसे गलत रास्तों की तरफ धकेल देता है। जरा हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए। सरकारें हर साल नए अस्पताल बनाती है, नए स्कूल खोलती है, लेकिन आबादी तेज रफ्तार से आगे भागती है कि हमारा बुनियादी ढांचा हमेशा छोटा साबित होता है। सरकारी अस्पतालों के गलियारों में मरीजों की भीड़, डॉक्टरों की कमी और स्कूलों में एक एक क्लास में बहुत सारे बच्चों का ठसाठस बैठना, यह अत्यधिक जनसंख्या का ही सीधा और क्रूर प्रहार है। सड़कों पर जरा सी बात पर होने वाले झगड़े असल में इसी अत्यधिक भीड़ से पैदा होने वाले मानसिक तनाव का हिस्सा है। रेडियो की यह महफिल सिर्फ निराशा की बातें करने के लिए नहीं है। एक सजग नागरिक और आपके दोस्त के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको इसका दूसरा पहलू भी दिखाऊं। हमारे देश के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारे देश में ऊर्जा है, सपने हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली युवाओं की फौज है। जनसंख्या अपने आप में कोई अभिशाप नहीं बनती, बशर्त वह आबादी कुशल, शिक्षित और स्वस्थ हो। अगर हम अपने इस युवा वर्ग को सही दिशा दें, उन्हें रट्टा मार पढ़ाई के बजाय आधुनिक हुनर, डिजिटल तकनीक और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करें, तो यह आबादी हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति बना सकती है। समस्या लोगों की केवल संख्या से नहीं है, समस्या इस बात से है कि क्या हमारे पास उन्हें एक योग्य नागरिक और देश की संपत्ति बनाने की ठोस योजना है या नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारे समाज में जनसंख्या वृद्धि के पीछे की असली जड़ें कहाँ हैं? इसके पीछे कुछ ऐसी सामाजिक धारणाएं हैं जिन पर आज हमें खुलकर बात करनी होगी। पहली धारणा है लड़के की चाहत। आज भी हमारे समाज में कई हिस्सों में यह सोच कायम है कि वंश केवल बेटे से ही आगे बढ़ता है या बुढ़ापे का सहारा सिर्फ बेटा ही बन सकता है। इस एक बेटे की चाहत में कई परिवार अपने यहाँ बच्चों की संख्या लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा। आज हमारी बेटियां अंतरिक्ष से लेकर सेनाओं की सीमा तक और खेल के मैदानों से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों तक देश का परचम लहरा रही है। बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान है। दूसरा कारण है अशिक्षा और महिला सशक्तिकरण की कमी। यह बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि जिन समाजों में महिलाएं अधिक शिक्षित है, वहां परिवारों का आकार छोटा और सुखी है। एक शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती है, बल्कि वह अपने परिवार के आकार और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के फैसले पुरुषों के साथ बराबरी से बैठ कर लेती है। इसीलिए महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना जनसंख्या नियंत्रण का सबसे बड़ा और अचूक हथियार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ गया है यह सोचने का कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार का असल मंत्र, इस नारे को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। छोटे परिवार का मतलब है बच्चे को बेहतर खानपान, बेहतरीन स्कूल की शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और माता पिता का भरपूर समय और प्यार। जन भागीदारी और जन आंदोलन बनाना। सरकारें नीतियां बनाती है, योजनाएं लाती है, लेकिन दुनिया की कोई

0: भी सरकारी नीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक देश की जनता खुद आगे बढ़कर उसे अपनी जिम्मेदारी न मान ले। इसे हमें एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। युवाओं की भूमिका। हमारे देश के नौजवानों को गांवों और कस्बों में जाकर नाटकों और चर्चाओं के माध्यम से लोगों को समझाना होगा कि सीमित परिवार ही खुशहाली की पहली सीढ़ी है। प्रकृति का सम्मान। इसके साथ ही जितनी आबादी आज मौजूद है उसे बेहतर जीवन देने के लिए हमें पानी की हर बूंद को बचाना होगा, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे और अपनी जीवन शैली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। चलते चलते बस एक आखिरी बात आपके जहन में छोड़ जाना चाहता हूँ। आज का यह विश्व जनसंख्या दिवस केवल सूखी संख्याओं को गिनने का दिन नहीं है, यह दिन है अपनी आत्मा को टटोलने का, अपनी जिम्मेदारी को पहचानने का। हमें यह सोचना होगा कि हम अपनी आने वाली मासूम पीढ़ियों को वसीयत में कैसा भविष्य देकर जाना चाहते हैं। क्या हम उन्हें एक ऐसी दुनिया सौंपना चाहते हैं जहां सांस लेने के लिए सिर्फ धुआं हो, पीने के लिए जहरीला पानी हो और जीने के लिए केवल संघर्ष हो, या फिर हम उन्हें एक ऐसा संतुलित, समृद्ध और मुस्कुराता हुआ समाज देना चाहते हैं यहाँ हर बच्चे को उसकी गरिमा, उसका अधिकार और उसकी खुशियाँ मिल सके। फैसला पूरी तरह हमारे और आपके हाथों में है। शुरुआत हमें खुद से और अपने परिवार से करनी होगी। जब देश का हर नागरिक जागरूक होगा तभी हमारी यह पावन धरती हरी भरी, शांत और खुशहाल बनी रहेगी।
1: सुनिए आपने एक वार्ता, विषय था विश्व जनसंख्या दिवस, चुनौतियां, समाधान और हमारी जिम्मेदारी। वार्ताकार थे श्री फूलचंद बांठिया, प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन श्री अमित सिंह द्वारा किया गया था। तो इस वार्ता के बाद सुप्रभात कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं एक संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ बिल्कुल, जैसे आयुष्मान भारत योजना बेहतरीन योजना हमारे देश में संचालित है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वैसे ही बहुत ही बेहतरीन एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। श्रोताओं, अपना हर घर, अपना जो घर है वो हर व्यक्ति का एक सपना तो होता ही है, इसी सपने को साकार करने और उसको कैसे मूर्त रूप लाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ये योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। शहरी क्षेत्रों में पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके अंतर्गत जो पात्र परिवार है वो प्रथम बार जो घर खरीदते हैं तो उनको ब्याज में छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। ये जो छूट है ये 1,80,000 रुपये तक की भी हो सकती है, तो इससे गृह ऋण की मासिक किस्त का बोझ जो है वो कम हो जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए आप पात्र व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत, नगर निकाय, जन सेवा केंद्र, अधिकृत बैंक या संबंधित आवास विभाग से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पक्का घर केवल रहने की जगह नहीं होता बल्कि सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बच्चों के बेहतर भविष्य का आधार भी होता है। श्रोताओं, आज हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि भी है। 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी ने हिंदी साहित्य को अनेक कालजयी कृतियां दी।

उनका उपन्यास तमस नाम तो आपको बिल्कुल याद होगा, भारत विभाजन की त्रासदी का एक अत्यंत मार्मिक दस्तावेज माना जाता है। इस पर आधारित दूरदर्शन धारावाहिक भी आपको याद होगा, बिल्कुल है ना। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में बसंती, मैयादास की माड़ी, झरोखे, कड़ियाँ और पाली प्रमुख है। नाटकों की बात करें तो हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में माधवी तथा मुआवजे आज भी रंगमंच पर आदर के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो भीष्म साहनी की लेखनी की सबसे बड़ी विशेषता थी सरल भाषा, गहरी मानवीय संवेदना और सामाजिक सरोकार। उन्होंने साहित्य को समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने का माध्यम भी बनाया। तो उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश को जोड़ा, एक बनाने का प्रयास किया, वो हमारे गीतों में आज भी झलकता है, जैसे कि

समाज को जोड़ने का माध्यम भी बनाया। तो उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश को जोड़ा, एक बनाने का प्रयास किया, वो हमारे गीतों में आज भी झलकता है। जैसे कि

श्रोताओं, सूरज अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में फैल चुका है। आशा है ये उजाला आपके विचारों और कर्मों में भी ऊर्जा भर देगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं मालकोंस आपसे अनुमति चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शुरुआत करते हैं ऊंचे नीचे पर्वतों के साथ। बहुत ही बेहद खूबसूरत इस गीत को सुनवाने के लिए हम बेकरार हैं। बड़ा दिन का ये गीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर हैं। जावेद अख्तर ने बेहतरीन लेखनी के साथ सजाया है और संगीत तो प्यारा सा मधुर सा जतिन ललित का है। सुनते हैं बड़ा दिन का ये गीत।

फिर वही चार, उदित नारायण, अलका याग्निक, जावेद अख्तर और जतिन ललित। सुना आपने गीत फिल्म यस बॉस से।

बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं फिल्म आजा नचले से गीत। सोनू निगम श्रेया घोषाल के स्वर में है, लिखा इसे जयदीप साहनी ने, संगीत सलीम सुलेमान का है।

सोनू निगम और अलका याग्निक को सुनते हैं। फिल्म का नाम है आँखें। लिखा है इस गीत को प्रवीण भारद्वाज ने, संगीत जतिन ललित का है। क्योंकि कुछ कस्में हैं जवां, कुछ वादे हैं हसीन।

सुनिधि चौहान और केके को सुना अपने एक फिल्म गरम मसाला के लिए, लिखा था इसे समीर ने। और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अभिजीत को फिल्म तुम बिन के लिए।

0: तुम बिन के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं रुकता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इस

0: मंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन,

0: पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित

0: खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand sign 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors.

0: Congolese have also mentioned the Prime Minister's historic visit to New Zealand on first bilateral visit in 40 years, focusing on trade and eco-links. Kerala birth rate has reached an all-time low, states the Indian Express, dropping into single digit for the first time. Hasina team planned Bangladesh return in December, willing to face arrest or even death, states the Tribune. And finally, the Statesman cites a major milestone for breed conservation and preservation of two Himalayan Gaddi dogs who are integral to the culture and pastoral heritage of the Western Himalayas, getting official Kennel Club recognition. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सौरभ। सौरभ कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी कहानी गौरी गाय। कहानीकार हैं श्री इंद्रजीत कौशिक।
3: ही ही ही। 8 साल की केत की खिलखिला उठी। दीदी, आप जब सर पर पल्लू लेती हो ना तो अजीब लगती हो, दूध का पतीला हाथ में थामे वह बोल पड़ी। अजीब क्यों? क्या तूने आज तक किसी औरत को सर पर पल्लू लेते हुए नहीं देखा? उसके पतीले में दूध डालते हुए चेतना ने पूछा। वह बात नहीं है दीदी, पर आप किसके लिए पल्लू सर पर लेती हो? घर पर तो कोई है ही नहीं, क्या मेरे लिए? कहते हुए वह बित्ते भर की छोकरी फिर से ही कर उठी। चल भाग यहां से, तू नहीं समझेगी इन बातों को। चल जा, तेरी मम्मी दूध के लिए राह देख रही होगी, चेतना उसकी बात सुनकर बोली तो वह कनखियों से मुस्कुराती हुई चली गई। गौरी 5 किलो दूध एक समय का देती है। शाम को जो दूध होता है उसे तो वह खुद ही रख लेती है, और सुबह का दूध बंदी वालों को देना होता है। घर में वह एक अकेली जान है, इसलिए इतने सारे दूध का रोज करे भी तो क्या। कैसी हो, नाश्ता कर लिया क्या? तुम्हारी सास कैसी है, गौरी? तभी सुजीत का मुंबई से फोन आ गया। नहीं नहीं, अभी केत की दूध लेकर गई है और सुमन अब आएगी, उसके बाद गौरी को चाटा डालूंगी, फिर मेरा नंबर आएगा। आप कैसे हैं, चेतना बोली। आंटी दूध दे दो। तभी सुमन बर्तन लेकर दूध लेने आ गई। सुमन को दूध देने के बाद चेतना ने वापस फोन लगाया तो वह नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगी, यह सोचकर वह अपने काम में लग गई। तभी गौरी के बोलने की आवाज आई। चेतना समझ गई कि उसे भूख लगी है। उसका चाटा पहले से तैयार था, इसलिए तगारी लेकर वह बाहर आई। इस बार भी सर पर पल्लू डालना नहीं भूली थी चेतना। आप समझ गई होंगी कि आखिर एक गाय के सामने किसी विवाहित स्त्री का सर पर पल्लू लेने का क्या संबंध है। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। चेतना नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। घर में पहले 2 सदस्य थे, सुजीत और उनकी माँ। चेतना के आने से अब 3 हो गए थे। जुग जुग जियो बेटा, दूधो नहाओ बूतो फलो, सासू माँ ने उसे झोली भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा तो चेतना निहाल हो गई। उनका स्वभाव

बहुत ही अच्छा और नेक था। हर पल उन्होंने चेतना को कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। सुजीत काम पर जाते तो चेतना उनके पास ही बैठी रहती। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद वह बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी महिला थी। चेतना को उनका सानिध्य बहुत अच्छा लगता था। पर एक दिन न जाने उनके हेत को किसकी नजर लग गई। सुबह की चाय पर तीनों एक साथ हंस बोल रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बदहवास से सुजीत और चेतना ने उन्हें ऑटो में बिठाया और तुरंत अस्पताल लेकर गए, पर तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। पलक झपकते जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस नश्वर संसार में किसी एक पल का भी पता नहीं। मौत कब किस रूप में आकर किसको साथ ले जाएगी कोई नहीं जानता। पल पल हर समय हम यही कुछ होते हुए देखते हैं, पर फिर भी यह मानकर चलते हैं कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। यह कैसी विडंबना है। हंसते बोलते यूं इस तरह सासू माँ का चले जाना चेतना और सुजीत को हतप्रभ कर गया। पर समय चक्र किसके रोके रुका है आज तक जो उनके लिए रुकता। उन दोनों ने इसे नियंता की मर्जी समझकर अपनी जीवन नैया खेने का प्रयत्न शुरू किया ही था, तभी एक झंझावात और आ गया। चेतना, मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया है, मुझे वहाँ ड्यूटी पर जाना होगा, वह भी अकेले। एक दिन सुजीत ने शाम को घर लौटकर बताया तो चेतना जड़वत हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह पाऊंगी, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, चेतना बोली। समझने की कोशिश करो चेतना, तुम तो जानती ही हो कि मुंबई बहुत बड़ा शहर है, वहाँ रहने का ठिकाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। कंपनी की तरफ से मेरे रहने की जगह ही बड़ी मुश्किल से फाइनल हुई है, फिर भी कोशिश करूँगा कि वहाँ जाकर एक छोटी जगह लूँ और फिर तुम्हें बुलाऊँ, सुजीत ने प्यार से समझाया। हम तो कहीं भी रह लेंगे, पर मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ प्लीज। अब तो सासू माँ भी नहीं है, ऐसे में तुम्हारे बिना इतना बड़ा घर मुझे काटने को दौड़ता है, मेरा कुछ तो सोचो, कहते हुए चेतना की आंखों में दर्द उतर आया। पर यहाँ भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि सुजीत जॉब छोड़ नहीं सकता था और मुंबई में इतनी जल्दी आशियाना कहाँ से मिलता। इसलिए मन मारकर ही सही, चेतना को अकेले ही इस घर में रहने की आदत डालनी थी। समय का चक्र ही कुछ ऐसा होता है कि वह सब कुछ सिखा देता है। चेतना ने भी अब बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल लिया था। खाली समय में वह पुस्तकें पढ़ने बैठ जाती या कुछ बागवानी करने लग जाती। इस बार दिवाली पर सुजीत छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। वह चेतना की अकेलेपन की वेदना को खूब समझ रहा था। रहने का कोई इंतजाम हुआ क्या, यूं कब तक मुझे अकेले रहना होगा सुजीत। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर तुम तो जानती ही हो कि वहां सब कुछ कितना महंगा है। मेरी नौकरी अभी नई नई लगी है, इसलिए पगार भी ज़्यादा नहीं मिलती। फिर भी इंतजाम होते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है, सुजीत ने प्यार से कहा। एक रोज खाना खाने के बाद सुजीत बाहर घूमने गया तो आते समय अपने साथ गौरी को लेकर आ गया। इन गाय माता को कहाँ से लेकर आ गए, क्या अपने साथ मुंबई ले जाने का इरादा है, चेतना के स्वर में थोड़ी चूहल साफ झलक रही थी। चेतना, गौरी गाय मेरे साथ नहीं बल्कि यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आई है। कहते हैं एक से भले दो, गौरी के यहाँ रहने से तुम्हारा मन भी लग जाएगा और समय भी आसानी से कट जाएगा, सुजीत ने कहते हुए गौरी की डोरी चेतना के हाथ में दे दी। जरा रुको, मैं भीतर से आरती लेकर आती हूँ, घर की लक्ष्मी का स्वागत तो जरूरी है, चेतना ने कहा और फिर भीतर जाकर आरती की थाली सजा कर ले आई। आरती करते हुए चेतना से पहली बार जी भरकर गौरी की तरफ निगाह डाली। एकदम सफ़ेद झक रंग की स्वामिनी गौरी के मस्तक पर हल्का गेरुए रंग का तिलक बना हुआ था। बड़ी बड़ी काली लेकिन सुंदर आंखों से झलकती करुणा और स्नेह की धारा, हष्टपुष्ट शरीर, लंबी पूंछ और दो छोटे छोटे सींग, चार थन की दौलत गौरी को हर तरह से कामधेनु का दर्जा दे रही थी। सुजीत और चेतना ने गौरी की परिक्रमा की, उसके मस्तक पर तिलक लगाया और फिर घी गुड़ खिलाकर स्वागत में शीश भी नवाया। गौरी को देखकर लग रहा था कि वह भी अपनों के बीच आकर खुश है। आंखों ने आंखों की भाषा जो पढ़ ली थी। ईश्वर ने सभी प्राणियों को आंखें दी हैं, आंखें आंखों की भाषा बहुत अच्छे से समझती हैं।
सच में सुजीत ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा था।

0: दिवाली के बाद जब सुजीत वापस मुंबई गया तो पीछे से गौरी ने चेतना को बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। बिल्कुल किसी घर के सदस्य की भांति वह चेतना के साथ और चेतना उसके साथ घुल मिल गई। थोड़े ही दिनों में हालत यह हो गई कि न गौरी को चेतना के बिना अच्छा लगता था और न चेतना को गौरी के बिना चैन मिलता था। अब तो दोनों के बीच इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी कि एक दूसरे की भावना को भी अच्छे से समझने लगे थे। अभी थोड़ी देर पहले तो रंभा रही थी तुम, अब क्या हुआ, चाटे की तरफ देख भी नहीं रही हो, खा लो। चेतना ने तगारी गौरी के सामने रखी तो उसने मुंह फेर लिया। चेतना समझ गई, वह भीतर गई और अपनी भी थाली लेकर वहीं गौरी के पास खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, गौरी भी अपने खाने पर टूट पड़ी। इसके बाद तो सुबह शाम दोनों का खाना साथ साथ ही होता। तू पिछले जन्म की जरूर मेरी कोई रिश्तेदार रही होगी, न तो तुझे मेरे बिना चैन न मुझे तेरे बिना अच्छा लगता है, चेतना ने गौरी के गले में बाहें डालते हुए कहा तो उसने जैसे सहमति में सर हिला दिया। एक दिन गौरी को खिला पिला कर चेतना ने रसोई का काम निपटाया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। फिर सोचा कि सुजीत से बात कर लूं। कुछ देर बात करने के बाद चेतना अपने कमरे में जाकर सो गई। थकी हुई तो थी ही, इसलिए बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ गई। तभी किसी की आहट से वह चौंक गई। चेतना हमेशा बत्ती बुझाकर ही सोती थी क्योंकि उसे लाइट में नींद नहीं आती थी। खटर पटर हुई तो उसे लगा जैसे कमरे में कोई आया है। इतनी रात गए उसके कमरे में, भला कौन घुसा होगा। अनहोनी की आशंका से चेतना कांप गई। अकेले होने के कारण थोड़ा डर भी लगा, पर फिर हिम्मत जताकर उसने बत्ती ऑन की तो देखा कि गौरी उसके पलंग के पास नीचे फर्श पर आराम से सो रही है। लो, ये तो अपनी गौरी निकली। मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कौन आया है। क्यों, तुझे भी बाहर अकेले में डर लग रहा था क्या? चेतना ने पलंग से उतर के गौरी के शरीर पर हाथ फेराया। वह चुपचाप ऐसे ही लेटी रही, जैसे कह रही हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे नींद आ रही है। इसके बाद तो ये रोज का क्रम हो गया, गौरी हमेशा उसके कमरे में आकर पास में सोने लगी। चेतना ने उसके लिए एक दरी बिछा दी थी ताकि उसे ठंड ना लगे। गौरी के कमरे में आकर सोने से चेतना को जैसे कंपनी मिल गई। सब कुछ ऐसे ही सामान्य रूप से चल रहा था कि एक दिन कुछ नया घटा। एक बदमाश खिड़की के रास्ते आधी रात के समय चेतना के कमरे में बुरी नीयत से आ घुसा। दबे पांव कमरे में दाखिल होने के बाद वह चेतना के ऊपर झुका ही था कि तभी गौरी ने खतरे को भांप लिया। वह उठ खड़ी हुई और उसने वह रौद्र रूप दिखाया कि जिसे देखकर चेतना दंग रह गई। गौरी ने अपने नुकीले सींग उस बदमाश के पेट में घुसा दिए और उसे जमीन पर पटक दिया। उसे शायद सपने में भी यह उम्मीद नहीं होगी कि उसका स्वागत कुछ इस तरह होगा। गौरी ने उसे अधमरा कर दिया था। किसी तरह गिरता पड़ता जान बचाकर वह बदमाश भाग निकला। उसके जाते ही चेतना की जान में जान आई। वह गौरी के कदमों में झुक गई। आज तो तूने साक्षात दुर्गा माँ का रूप धारण करके मुझे उस बदमाश के चंगुल से बचाया है गौरी, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूँ? आज तू न होती तो न जाने मैं कैसे उस दुष्ट से खुद को बचा पाती, चेतना कहते हुए उससे लिपट गई। कुछ रोज बाद जब सुजीत छुट्टी पर घर आए तब चेतना ने यह पूरी बात उसे बताई। सुजीत गौरी को शायद आने वाले खतरे का आभास हो गया था, तभी तो वह सासू माँ की तरह अपना खूंटा छोड़कर मेरी रक्षा के लिए कमरे के भीतर बगल में आकर सोने लगी थी। उसने यह दिखा दिया कि वह मेरी रक्षा करने में सक्षम है, चेतना ने अपने पति से कहा तो सुजीत दंग रह गया। तुम महान हो गौरी, तुमने मेरी धर्मपत्नी की रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना माँ, सुजीत गौरी के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला। बस तभी से चेतना गौरी के सामने जाती है तो सर पर पल्लू लेना नहीं भूलती। सुना था गंगा के बारे में कि मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है कि मानो तो मैं गौरी माँ हूँ, न मानो तो केवल एक गाय।
1: कार्यक्रम सौरभ में अभी आपने सुनी कहानी गौरी गाय। कहानीकार हैं श्री इंद्रजीत सिंह कौशिक। निश्चित रूप से श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं ना कि प्रेम केवल इंसानों के बीच नहीं होता, बल्कि ये तो उस जीव के साथ जुड़ जाता है जिसके साथ हम अपनापन और संवेदना का व्यवहार करते हैं। यही बात गाय और उसके पशुपालक के रिश्ते

पूरी तरह से लागू होती है। गाय और उसका पशुपालक दोनों का रिश्ता केवल दूध देने और उसे पालने तक सीमित नहीं होता। समय के साथ यह रिश्ता विश्वास, स्नेह और आत्मीयता का रूप ले लेता है। एक पशुपालक अपनी गाय की हर आदत को पहचानता है। उसे पता होता है कि उसकी गाय कब खुश है, कब उदास है, कब उसे भूख लगी है या कब वो किसी तकलीफ में है। वहीं दूसरी ओर गाय भी अपने जो मालिक हैं उसकी आवाज़, उसके कदमों की आहट और उसके स्पर्श को पहचान लेती है। कई बार देखा गया कि जैसे ही पशुपालक दूर से आवाज़ लगाता है, आपने सुना होगा, तो गाय तुरंत उसकी ओर देखने लगती है या उसके पास चली जाती है। आप लगाइए आवाज़, आपकी तरफ ना तो वो देखेगी ना आपकी तरफ आएगी उस तरीके से, जिस तरीके से, या कह सकते हैं कि वो पशुपालक का और उस गाय के बीच में ऐसी केमिस्ट्री होती है जो हम नहीं समझ सकते, वो वही समझ सकता है जिसने वो रिश्ते को जिया होता है। ग्रामीण भारत में तो ये रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत दिखाई देता है। तो सुबह का पहला नमस्कार ही अक्सर गौशाला से शुरू होता है। तो पशुपालक सबसे पहले अपनी गायों को चारा पानी देता है, उसकी सफाई करता है और उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। ये सारी चीज़ें करके ही वो एक तरह से उसे पशु नहीं बल्कि गौ माता के रूप में सम्मान देता है। ऐसी ही मार्मिक और बेहतरीन रचना आपने सुनी, कहानी गौरी गाय, कार्यक्रम सौरभ के अंतर्गत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और बेहतरीन नगमा भूपेंद्र और मिताली के ही स्वर में।

0: जग भूपिंदर और मिताली के स्वर में इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: वीर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज। प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
1: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी विधान

0: सभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोर लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कल कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: शिलान्यास लोकार्पण का और आमसभा का प्रोग्राम स्थापित है, जिसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं, इसी प्रकार के बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं, आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आ रहे हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में निर्देश दिए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना के सभी काम निर्धारित समय सीमा से पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में हुई परियोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा मुआवजा संबंधी कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम प्रगति पर हैं। नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि विभिन्न फीडर, नहरों, पंप हाउस, चंबल एक्वाडक्ट और अन्य घटक पर कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से इस अवसर पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में आज से सभी जिलों में 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि अभियान की थीम जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने सही और खुशहाल पर जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
2: अभियान के तहत आशा सहयोगिनियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर योग्य दंपति सर्वे किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सास बहु सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गर्भ धारण के बीच स्वस्थ अंतराल और आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों पर खुली चर्चा होगी। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आधुनिक गर्भ निरोधक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। सुखी परिवार और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आशा सहयोगियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा आमजन को जागरूक किया जाएगा। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण ट्राई के बीच दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत देश के 5,68,000 से अधिक गांवों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क का ऐप आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे का काम 1,40,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। डाक सेवक अपनी नियमित डाक वितरण गतिविधियों के दौरान ट्राई द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और नेटवर्क संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की कमियों की पहचान की जाएगी और नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय, वैज्ञानिक और पारदर्शी है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सर्वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। केवल अधिकृत प्रगणक ही ओबीसी परिवारों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप

0: जानकारी दर्ज कर रहे हैं। आयोग के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक विकल्प आम लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से डेटा दर्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि अधिकृत प्रगणकों के लिए वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्था है। आयोग ने आमजन से सर्वे को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की राज्य स्तरीय रैंकिंग में सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक बूंदी दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा। एमपैक्स श्रेणी में नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने पहला, बूंदी जिले की भिया ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दूसरा और घाट का बराना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और एमपैक्स मिलकर काम करें ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज, प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के साथ
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल कंजम्पशन, अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
4: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में 3 तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
3: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
4: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड

0: वांट जो बोलते हैं
1: जी
0: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो, और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
0: बिल्कुल,
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
0: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है, लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या एक्स वाई जेड इन माय फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी तीन गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, तुम इतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए, किसी का वो भड़ास फ्रस्ट्रेशन वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं x से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6-figure सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का एमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का एमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है।

0: है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी ध्येय है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमिडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से। आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है, लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने के ओर?
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर जो एलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इम्प्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जिस

0: लोग उसको परचेज किए, यूज किए धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं।
0: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया x से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफ

0: स्टाइल उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड। लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जैसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं।

0: रिस्ट्रिक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए बोला जाएगा,
1: जी
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफ स्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना, कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता है जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन इम्पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: यस,
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलते हैं वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। वो
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट

0: एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरमेंट, एस सोशल, एंड जी इज गवर्नेंस। तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाए, माइंडसेट अपनाए, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाए ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, IAS, IPS, MLA, सोशल चेंज मेकर, सबसे ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से

0: बात की और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पॉडकास्ट प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:40 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के आज के इस अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित जसराज का राग विलक्षणी तोड़ी में गाया ख्याल। तबला पर सरहमान खान है और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं जसकरण गोस्वामी। विलंबित रचना के बोल हैं श्री कामेश्वरी करुणा करो, जबकि द्रुत रचना के बोल हैं गुरु चरणन में ध्यान लगाओ। तो लीजिए प्रस्तुत है पंडित जसराज का राग विलक्षणी तोड़ी में गाया ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी हमने आपको सुनवाया पंडित जसराज का राग विलक्षणी तोड़ी में गाया ख्याल। तबला पर संगत कर रहे थे रहमान खां और हारमोनियम पर थे जसकरण गोस्वामी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आइए अब सुनते हैं फिल्म अलबेला से ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत है जतिन ललित।

उदित नारायण को सुनते हैं फिर से। फिल्म का नाम है बेवफा सनम। लिखा है इस गीत को योगेश ने, संगीत निखिल विनय का है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा एक गीत सुनते हैं, अलका याग्निक और मनहर उदास के स्वर हैं और फिल्म का नाम है त्रिदेव। लिखा है इस गीत को आनंद बख्शी ने। गली गली में फिरता है।

0: कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म खिलाड़ी से अगला गीत। इस गीत में आवाज़ें हैं अभिजीत और उदित नारायण की, साथ में है कविता कृष्णमूर्ति सपना अवस्थी। लिखा इस गीत को श्यामराज ने और संगीत है जतिन ललित का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: कार्यक्रम में अब सुनते हैं अभिजीत को फिल्म अंजाम से। संगीत है आनंद मिलिंद का और इस गीत को लिखा है समीर ने।

0: आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना को समर्पित, हमारे देश को समर्पित कैलाश खेर का ये संदेश और गीत।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक-एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग-रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

फिल्म बहार आने तक का गीत सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह के स्वर में। इस गीत को

इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियो वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। सुनते हैं कार्यक्रम हेलो बीकानेर। फोन इन पर आधारित ये कार्यक्रम जिसके सूत्रधार हैं श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की और संयोजन है श्री अमित सिंह का। तो सुनते हैं कार्यक्रम हेलो बीकानेर।

कार्यक्रम हेलो बीकानेर सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी अपने निर्धारित समय पर हाजिर हो चुके हैं लेकर प्रोग्राम हेलो बीकानेर। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और एक अच्छे से दिन की शुरुआत भी आपने अच्छे से कर ली होगी। तो हम भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस बात से कि जब कोई तूफान आता है तब अक्सर बड़े पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन साधारण घास हमेशा बची रहती है। इसलिए साधारण और अहंकार मुक्त होना ही हमें अधिक शक्तिशाली और स्थिर बनाता है। श्रोताओं, कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि यदि हम विनम्र रहेंगे तभी हम सामाजिक रूप से एक सामाजिक प्राणी बन पाएंगे। आपसी बातचीत का सिलसिला हमारा बरकरार रहेगा जब हम भीतर से विनम्र रहेंगे। हमारे अंदर विनम्रता तभी कायम हो पाएगी

0: जब हम अहंकार को अपने आसपास भी नहीं आने देंगे। कार्यक्रम हेलो बीकानेर भी एक ऐसा ही जरिया है जिसमें हम हमारे श्रोताओं से बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनके विचार जानते हैं और उन्हें उनकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, जिसकी बदौलत निरंतर नए लिसनर्स, नए श्रोता हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये वार्तालाप तभी संभव है जब हमारे अंदर भी विनम्रता है और हमारे जो श्रोता हैं वो भी विनम्र हैं, और ये विनम्रता ही हमारे रिश्ते को एक अटूट रिश्ता बनाने की ओर अग्रसर करती है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में संयोजन है श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति है श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। और आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। आज करते हैं आज के कार्यक्रम का और बात करते हैं हमारे आज के पहले श्रोता से। हेलो,
1: नमस्ते बहन जी।
0: हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: नमस्ते बहन जी, गांव खोकरा वाली से विनोद बरा सा निवेदन कर रहा हूँ।
0: जी विनोद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, प्रोग्राम आपके सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। युवाणी सुनता हूँ, ग्राम जगत सुनता हूँ, गुंजे गांव गवाड़ प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और हेलो बीकानेर का कहना ही क्या।
0: जी जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप हमारे नियमित कार्यक्रम सुन रहे हैं और उन्हें पसंद भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर प्रोग्राम सुनता हूँ बीकानेर के, की प्रस्तुति भी बहुत शानदार होती है।
0: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप ऐसे ही जुड़े रहिए। और बताइए आज क्या संदेश लेकर आए हैं?
1: पशु पक्षी हैं, उनको पानी हमेशा डालते रहना चाहिए ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इसलिए तो पानी उनके लिए जरूरी है। हाँ जी हाँ जी, गर्मी अब तो 10-12 दिन हो गए हैं, बहुत काफी पड़ रही है, बरसात भी नहीं हो रही।
0: बरसात नहीं हो रही इसी वजह से उमस जैसा माहौल हुआ हुआ
1: है। उमस बहुत ज्यादा है।
0: अगर हवा प्रकृति में रुक जाती है तो ऐसे लगता है कि बस हमारी सांसें ही रुक गई हैं जैसे।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो इसमें विशेष रूप से ख्याल रखें, अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल जो है वो पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, पेय पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन हम लगातार करते रहें। हाँ जी बताइए, आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: हमारा खानदान मूवी का मेरे महबूब, ये गीत मोहम्मद अजीज की आवाज में सुना दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल विनोद जी, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करते हैं और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: आज के हम सफर साथियों को शहदोल शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार वार्ड का प्यार भरा नमस्कार बहन जी।
1: जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में। राम कुमार जी कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जब आपके अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे बातें, आपकी मीठी आवाज प्रोग्राम में खूबसूरत गीतों से सजा हुआ ये प्रोग्राम पेश करते हैं तो बहुत आनंद आता है।
1: जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और आप जब हमें प्रतिक्रिया देते हैं हमारे कार्यक्रम को लेके तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा प्रयास सफल रहता है।
0: बिल्कुल सफल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं प्रोग्राम तैयार करने में बहुत।
1: और आप जैसे श्रोता हमसे निरंतर जुड़ते रहते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं तो उससे और हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम अपने कार्यक्रम को और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास करते हैं।
0: बिल्कुल ये बात तो सही है, श्रोता एक आईना होता है प्रस्तोता के लिए। जो प्रस्तोता तो होता है तो वो श्रोताओं को सुन प्रोग्राम तैयार इसलिए करते हैं कि उनका प्रोग्राम किस तरह के पसंद आते हैं श्रोताओं को, इसी तरह से प्रोग्राम तैयार करते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है इस बात के लिए कि आप इतनी मेहनत के साथ श्रोताओं को खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे आकाशवाणी बीकानेर टीम को शुभकामनाएं। काफी दिनों से प्रोग्राम बहुत खूबसूरत पेश किए जा रहे हैं, श्रोताओं की प्रतिक्रिया ली जा रही है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। क्योंकि
1: जी जी जी जी बिल्कुल शुक्रिया राम कुमार जी। और बस आप ऐसे ही हमारे रेडियो से जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए नियमित और अपनी प्रतिक्रिया यूं ही हमारे समक्ष व्यक्त करते रहिए।
0: ओके जी, और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सभी अपने राजस्थान के भारत में जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है वहाँ पर बारिश बरकत की हो, जहाँ बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर बारिश हो जाए ताकि जीव जंतु और पेड़ पौधे पक्षी सब इंतजार कर रहे हैं, सभी के लिए बरसें अच्छी बरसात हो।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है कि वहाँ बाढ़ के हालात हो चुके हैं।
0: जी जी और जी, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है काफी सालों से, इसकी वजह से ये खेल खेला जा रहा है।
1: जी प्रकृति के साथ खिलवाड़ वैसे ही है जैसे हम अपने जीवन में भी यही करते हैं कि हम जो करते हैं वो रिटर्न गिफ्ट हमारे पास आता ही है।
0: बहुत ज्यादा हो गए हैं इसकी वजह से ये खेल चल रहा है सब।
1: जी लेकिन हमें अभी संभलना होगा और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल संभलना होगा, इसलिए तो मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि हमें अधिक से अधिक अपनी धरती को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत आवश्यक है। और बारिश का मौसम आ रहा है, सभी श्रोता जितने सुन रहे हैं कम से कम एक या दो पेड़ वृक्ष लगाएं और उनकी देखभाल करें, तभी तभी ये वृक्ष पैदा हो बड़ा पेड़ बनकर सामने आएगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई वर्षा ऋतु का जो आगाज है वो हो चला है और इस मौसम में जो पेड़ पौधे हैं वो जल्दी पनपते हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: हमें
0: बिल्कुल,
1: बारिश के पानी की भी बचत करनी है, साथ ही अपने आसपास कोई ना कोई पेड़ ऐसा जरूर लगाएं जिसका हम पालन पूरा कर सकें, नियमित रूप से उसकी देखभाल हम कर सके।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। एक बहुत ही प्यारा गीत है कभी कभी फिल्म का, मुकेश जी और लता जी की आवाज में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपकी आवाज का जो आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का आनंद ले रहे हैं, सभी की नजर मेरी तरफ से।
1: जी बिल्कुल, बेहद ही खूबसूरत गीत आपने चुना है राम कुमार जी। और आइए अब सुनते हैं।

0: नमस्ते मैम
1: जी। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: जी मैम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: जी संतोष जी, कैसे हैं आप?
0: मैडम बहुत अच्छे हैं, आकाशवाणी बीकानेर से पसंदीदा कार्यक्रम इस फोन इन कार्यक्रम में आज पहली बार जुड़ाव हो रहा है, बहुत मन को सुकून मिल रहा है मैडम जी।
1: जी संतोष जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत कि आज आपका कॉल लग गया।

0: और हमारी और आपकी बातचीत हो रही है।
1: जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत आभार आपका भी, और इतना अच्छा प्रोग्राम से जो जो प्रस्तुत होता है आकाशवाणी बीकानेर से, और आपकी मधुर शैली पहुंचती है हम तक, तो बहुत ही अच्छी लगती है मैडम जी सब कुछ
0: जी जी
1: प्रस्तुति
0: जी
1: आपकी।
0: जी शुक्रिया संतोष जी, आपका बहुत बहुत। संतोष जी आप करते क्या हैं?
1: मैडम मैं आकाशवाणी में वार्ताकार हूँ मैडम जी।
0: जी जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश में कहाँ पर?
1: आकाशवाणी स्टूडियो शेड्यूल है मेरे यहाँ पे पास में।
0: जी जी जी तो आप वार्ताकार हैं, वहाँ पर आप अपनी वार्ता लिख के ले जाते हैं और प्रसारित होती है आपकी वहाँ से वार्ता।
1: जी
0: तो बताइए संतोष जी, आज क्या संदेश देंगे?
1: जी सबसे पहले तो ये अब मौसम है ना मैडम जी, खास करके बारिश का दौर शुरू हो चुका है। क्षेत्रों की बात करते हैं, आसपास के लोगों की बात करते हैं, तो जो बरसात में निकलने वाले जानवर होते, खास करके सर्प हो गए, और ऐसी चीजों से बचाव करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: खेती बाड़ी करते समय अपने आप का खास ध्यान रखना चाहिए, और जो आकाशीय बिजली गिरती है, खास करके युवाओं में हो गए, बड़े बुजुर्गों में हो गए, महिलाओं में ज्यादातर गिरता है सब कुछ आकाशीय बिजली, जिससे भी बचाव करना चाहिए। सावधानी पूर्वक यदि काम करेंगे तो सफलता हमें प्राप्त होगी, और जितनी भी मेहनत होगी उसका हमें फल भी मिलेगा।
0: जी बिल्कुल संतोष जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है बहुत, कि भाई बारिश का मौसम है तो उसका आनंद हमें तभी मिल पाएगा जब हम अपने आसपास जो है सुरक्षा चक्र बना के चलेंगे, यानी कि घर
1: जी
0: से
1: बिल्कुल
0: बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षित रूप से हम आगे बढ़ें, मार्ग को देख के चलें। अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वहां पर भी विषैले जो जीव जंतु हैं इस समय वो बाहर आ जाते हैं।
1: जी।
0: आपके वहां पर कैसा है मौसम?
1: मैडम यहाँ ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे लगातार 15 दिन पहले से ही बारिश हो रही है, प्री मानसून से ही बारिश यहाँ पे होती जा रही
0: अच्छा
1: है।
0: जी, तो वहाँ पर हालात कैसे हैं आपके? ठीक हैं? बाढ़ के हालात तो नहीं है?
1: नहीं मैम, बाढ़ की हालात नहीं होती, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे नदियाँ निकलती है, खास करके एक जोहिला नदी हो गई, और यहाँ पे अमरकंटक है पास में, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो वहाँ पे चले जाते हैं सारे पानी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आप हमारे कार्यक्रम ऐसे ही सुनते रहें नियमित रूप से, और आपका कॉल हम चाहते हैं कि हर बार लगे, जब भी आप प्रयास करें आपका प्रयास सफल रहे। और बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मूवी का नाम है मोहरा, और मोहरा मूवी का आप सुनवा दीजिएगा, ना कजरी की धार ना मोतियों की हार।
0: जी जी जी तो हमारे कंप्यूटर जी ने भी आपका ये गीत सर्च कर लिया है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते। हाँ
0: जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: जी नमस्ते जी, मैंने पहली बार फोन लगाया बीकानेर से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आज आपने प्रयास किया और आपका प्रयास सफल हो गया और
1: हाँ जी,
0: आज
1: पहली बार भी फ्रेश हो गया।
0: कार्यक्रम हेलो बीकानेर में आपकी आवाज़ सभी श्रोता सुन रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: जी तो बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं।
1: रशीद मोहम्मद जाकिर बोल रहा हूँ, मारवाड़ छापरी से। जी
0: जी रसीद जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ है और अच्छे हैं।
0: जी बताइए आज क्या संदेश देंगे।
1: संदेश ये है कि अभी बारिश का मौसम है और बारिश चल रही है और अभी भी हमारे यहाँ बरस रही है। जैसे
0: जी बहुत खूब कि आपके वहाँ पर बारिश हो रही है।
1: कि जैसे पुराने टायर वगैरह या कहीं पानी इकट्ठा होता था उसका ध्यान रखना चाहिए, कहीं मच्छर वगैरह पैदा न हो,
0: बिल्कुल सही
1: बीमारी
0: कहा
1: ना फैले, नाली
0: जी,
1: वगैरह डट जाती है, उनको साफ रखें, इससे स्वस्थ आती रहती
0: बिल्कुल सही
1: जैसे।
0: कहा रसी जी आपने। अगर हम अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और बारिश का जो मौसम है उसका आनंद भी पूरी तरह से ले पाएंगे।
1: जी मैडम
0: जी तो बताइए आप करते क्या हैं।
1: जी, मोबाइल का शॉप है हमारा, रिपेयरिंग का और इलेक्ट्रिक की दुकान है, तो
0: जी बहुत
1: पूरा
0: खूब।
1: दिन रेडियो सुनते एंजॉय करता हूँ।
0: तो मोबाइल की
1: हाँ
0: आपकी दुकान है और मोबाइल तो ऐसा माध्यम आजकल बन चुका है कि
1: जी,
0: उसके बिना तो गुजारा भी नहीं है।
1: गुजारा मिल गई है
0: तो आप उसी के माध्यम से आप हमसे बात भी कर रहे हैं।
1: जी मैडम। मैम
0: तो बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे।
1: 1956 का एल्बम है चोरी चोरी, और गाने का बोल है पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, मैं आजाद हूँ दुनिया के छगन में, शक्कर का गाया हुआ है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग
0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने चुना है और मौसम के अकॉर्डिंग आपने चुना है ये गीत। तो फिर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: हाँ जी मैडम नमस्कार
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर
0: जी।
1: में।
0: धन्यवाद, मैं उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ, जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से। मस्त
1: जी उदयलाल जी, कैसे हैं आप?
0: है,
1: और आप?
0: मौसम का आनंद ले रहे हैं, लेकिन 2 दिन से बरसात नहीं आ रही है।
1: तो वैसे ही आपकी तो झीलों की नगरी है।
0: सुहाना रहता है, झीलों की नगरी भी है और जिले भी स्वच्छ रहती है, लेकिन अभी बारिश का इंतजार है।
1: उदयपुर में आप रहते हैं तो झीलों में स्वच्छता पर्याप्त रूप से है, आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल साफ सुथरी जिले हैं,
1: जी।
0: अभी किसी भी तरह की गंदगी फैलाने का किसी को भी अधिकार नहीं है, सख्त कार्रवाई होती है।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारा जो उदयपुर शहर है वो झीलों की नगरी से ही उसकी पहचान है।
0: विदेशों से टूरिस्ट आते हैं तो वो फिर
1: जी
0: स्वच्छ छवि देखते हैं झीलों की, तो अच्छा संदेश जाता है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत। और ये सब

0: विदेशों से टूरिस्ट आते हैं तो वो फिर
1: जी
0: स्वच्छ छवि देखते हैं झीलों की, तो अच्छा संदेश जाता है।
1: जी जी बिल्कुल बहुत। और ये सब एकजुट होकर ही होता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वासी हैं, वो भी इसमें सहयोग करते होंगे निश्चित रूप से।
0: पूरा सहयोग करते हैं।
1: तो बस यही बात है कि और हम भी, हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, उन्हें भी स्वच्छता का संदेश देते हुए यही कहेंगे कि जैसे उदयपुर झीलों की नगरी स्वच्छ हमारे वहाँ के नागरिक बना के रखते हैं झीलों को, वैसे ही हम भी अपने शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास निरंतर करते रहें।
0: हम अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखेंगे तो आसपास के लोग भी देखेंगे, तो उनके शहर को भी, गांव को भी वो स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे।
1: जी
0: इस
1: जी
0: तरह से पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने उदयलाल जी। और ये प्रयास एकजुट होकर ही होगा, हम सब
0: जी
1: एकजुट होकर अगर प्रयास करेंगे तो ये सफलता भी हम अर्जित करने में सफल रहेंगे। तो बताइए
0: जी
1: आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म राम तेरी गंगा मैली का सुना दीजिए। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन।
1: जी, तो हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे
0: जी
1: ये
0: मेरे साथ
1: गीत।
0: सुनेंगे, सबसे पहले तो आप सुनेंगी, हमारी जीवन संगिनी है कौशल्या देवी, वो सुनेंगी, हमारे परिवार के मेंबर सुनेंगे, और बीकानेर के सभी श्रोता भाई बहन सुनेंगे, और मेरे एकता रेडियो श्रोता संघ के सभी मित्र सुनेंगे।
1: जी, तो चलिए हम सब मिलकर सुनते हैं इस बेहद ही खूबसूरत गीत को। सुनिए आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।

0: हाँ जी, ओम सर, नमस्कार।
1: हरि ओम, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: हाँ जी, ठीक
1: जी सुभाष जी, कैसे हैं आप?
0: है। आप सुनाओ। संदेश
1: जी हम भी ठीक हैं, बताइए आज क्या संदेश लेकर आए हैं?
0: ये है कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: आदमी क्या है कि थोड़ी सी सफलता मिलती है, थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ी सुंदरता आ गई, सेवा कर ली, तो अहंकार आ जाता है। अहंकार वाले आदमियों को भगवान पसंद नहीं है, पापी को पसंद है, लेकिन अहंकार वाले को नहीं है।
1: जी
0: अहंकार से आदमी क्या है कि नीचे दुखता,
1: जी बिल्कुल सही
0: उसको
1: कहा।
0: कामयाबी मिलती नहीं है। वो चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, कितना ही वो कर ले, लेकिन अहंकारी आदमी कभी क्या है कि सफल नहीं पा सकता, सफलता उसे नहीं मिलती। मेरा ये कहना है,
1: जी जी
0: रावण
1: बिल्कुल।
0: को बहुत अहंकार था, उसने सारा परिवार का नाश कर दिया, पूरी लंका को जला दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन इस अहंकार के कारण। अगर उसमें अहंकार नहीं होता तो बहुत बड़ा विद्वान था।
1: जी
0: देवता
1: बिल्कुल,
0: लोग उसके यहाँ काम करते थे, अग्नि देवता खाना बनाते थे,
1: जी बिल्कुल
0: वायु
1: सुभाष
0: देवता
1: जी,
0: झाड़ू लगाते थे, शनि को उसने दीवार पे चिना दिया था। सूर्य देवता को कहता है सूर्य गर्मी ज्यादा है, सूर्य कम करो, तो वो कम कर देता तापमान,
1: जी बिल्कुल
0: इतना वो
1: सुभाष जी,
0: बदमाश
1: आपने
0: था,
1: एकदम सही कहा कि अहंकार जो होता है वो व्यक्ति के गुणों को खत्म कर देता है एक तरह से।
0: खत्म कर देता।
1: तो हमें अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, और जितना
0: जितना नरम
1: विनम्र
0: रहोगे उतनी सफलता मिलेगी आपको,
1: उतनी आपको सफलता मिलेगी, और उतना ही आपका जीवन जो है वो सुकून भरा बना रहेगा।
0: बिल्कुल शांति मिलेगी, सब कुछ होगा। अहंकार
1: हाँ
0: के कारण क्या है कि जीवन भी बर्बाद होगा, परिवार भी बर्बाद।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा। और अहंकार एक ऐसी चीज है कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाए, तो अगर साक्षात भगवान भी उसके सामने आ जाए, तब भी जो है वो उसकी समझ जो है, उसकी जो मति जो है, वो पूरी तरह से विलीन हो जाती है, जैसे कि दुर्योधन के साथ हुआ।
0: यही मैं कह रहा था कि दुर्योधन के सामने भगवान थे, वो मानता ही नहीं था,
1: साक्षात भगवान कृष्ण उनके
0: फिर
1: सामने थे, और
0: भी वो नहीं मानता था।
1: नहीं माना
0: अहंकार
1: उनको।
0: बहुत था दुर्योधन।
1: हाँ, बस वही अहंकार के कारण ही पतन हुआ उनका सबका। और अब बताइए आज आप गीत कौन सा सुनेंगे?
0: ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, पेंगे देवानंद की, लता की आवाज में गीत है, चांद फिर निकला मगर तुम ना,
1: जी
0: बेहतरीन सुंदर मीठा दर्द भरा गीत।
1: जी बेहद ही खूबसूरत गीत है बेशक ये गीत रात का और रात की तन्हाई में सुनने वाला गीत है। आपने खैर दिन में पसंद किया है, तो हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि
0: बुधवार का इंतजार करते हैं, आप हमारा इंतजार करो ना करो, हम तो आपका करते ही हैं।
1: जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप बुधवार का इंतजार करते हैं, और जब ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को, तो विशेष रूप से आप इस कार्यक्रम को सुनिए और आनंद लीजिए आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: जी, नमस्ते।
1: बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मेरा नाम है दुलगोविंद मिश्रा, मैं उड़ीसा झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
1: जी बहुत दूर से आपने हमें कॉल किया है।
0: जी, मेरा गांव का नाम है सुलाई, SULAHI, सुलाई।
1: जी, तो सुलाई गांव का नाम है आपका, उड़ीसा
0: जी
1: में हैं आप अभी इस वक्त।
0: जी जी
1: जी, तो आपका कॉल आज हमारे यहाँ पर पहली बार लगा है,
0: जी पहली बार लगा है।
1: तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपका हमारे यहाँ पर कॉल लग चुका है और आपकी और
0: जी
1: हमारी बातचीत हो रही है।
0: जी बहुत बढ़िया सर, मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं बहुत दिन से मैंने ट्राई कर रहा था सर, नहीं लग रहा था, आज लगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी, आज आपका प्रयास सफल रहा।
0: जी
1: तो बताइए आप करते क्या हैं?
0: जी हम मैंने पहला तो मैं सर मैंने 2023 में मैंने मसिया तक मैंने राइस मिल में मैनेजरिंग काम कर रहा था। अभी 2023 मसिया के बाद तो मेरा अभी मैं घर में हूँ, और मेरा पिताजी पंडिती काम करते हैं, तो पंडिती काम में उनका सहायता करता हूँ, मैं भी करने के लिए जाता हूँ पूजा पाठ
1: जी
0: करने के लिए।
1: जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप करते हैं। और उड़ीसा तो अपने आप में फेमस है, पूरी
0: जी,
1: जगन्नाथ पुरी जो है।
0: अरे माने जगन्नाथ यात्रा हमारा इधर पूरा प्रसिद्ध है उड़ीसा में।
1: और वहाँ का मौसम कैसा है इस समय?
0: मौसम ज्यादा ठंडा है, माने 3 दिन से पिछले 3 दिन से बारिश हो रहा था। कल से थोड़ा सा, कल 10 बजे से थोड़ा सा माने बारिश नहीं हुआ है, लेकिन मौसम बादल बादल छाया है मौसम।
1: बढ़िया है, अच्छा है, आपके वहाँ पर अच्छा मौसम हुआ हुआ है और साथ ही
0: जी
1: आपके वहाँ पर जगन्नाथ पुरी का पर्व जो है वो भी चल रहा है, उसका
0: जी
1: भी आप आनंद ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी की।
0: जी जी
1: तो बस आप ऐसे ही सेवा करते रहें और हमारे
0: जी
1: कार्यक्रम भी सुनते रहें रेडियो से।
0: जी
1: जी, तो अब बताइए आज अब गीत कौन सा सुनेंगे?
0: ये दोस्ती फिल्म का, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये सब मैंने आपको डेडिकेट है, और जितना भी श्रोता बंधु सुन रहे हैं सबको डेडिकेट है। भगवान सबका चला पथ में पुष्प वृष्टि करे, सबका धन जन गोपलक में प्राप्ति करे, ये मेरा मैंने भगवान से प्रार्थना है, आशीर्वाद है।
1: जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने इतनी अच्छी कामना करी हम
0: जी
1: सबके लिए, सभी श्रोताओं के लिए।
0: जी
1: और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल किया, और ऐसे
0: जी
1: ही आपका कॉल हमारे यहाँ पर आता रहे और आपकी शुभकामनाएं हम तक पहुँचती रहें,
0: ठीक,
1: यही हम
0: धन्यवाद,
1: कामना करते हैं। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
1: नमस्कार, मैं वृंदावन कॉलोनी से राजेंद्र बिडवानकर बोल रहा था।
0: जी राजेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसे हैं मैडम? संदेश
0: जी हम भी ठीक हैं, बताइए आज क्या संदेश लेकर आए हैं?
1: तो अभी बारिश का मौसम है,
0: बारिश का
1: तो
0: मौसम तो है लेकिन बारिश अभी इतनी खास
1: बारिश
0: हुई
1: आ नहीं रही है।
0: नहीं बिल्कुल इंतजार है बारिश का।
1: बारिश का इंतजार है, तो अपने को चलो बारिश से पहले, फिर बारिश के बाद मच्छर वगैरह होते हैं, तो उससे बचाव करना है अपने को।
0: और बारिश के पानी का संचयन भी करना है, इकट्ठा भी करना
1: बारिश
0: है।
1: के पानी का संचय भी करना है, और पेड़ पौधों के लिए बहुत उपयुक्त, बहुत मतलब अमृत है ये, तो
0: जी
1: अभी गार्डनिंग करेंगे, कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
0: वृंदावन कॉलोनी में रहते हैं तो आपके वहाँ पर तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी है और
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
0: सड़कें भी चौड़ी चौड़ी हैं जिस पर आप आराम से बागवानी कर सकते हैं, घर के
1: हाँ
0: बाहर
1: बिल्कुल,
0: कर
1: मैंने तो
0: सकते
1: घर पे
0: हैं।
1: लगा रखे हैं, गमलों में लगा रखा है।
0: हाँ गमलों में भी लगा सकते हैं और काफ़ी ज़मीन का स्पेस भी काफ़ी है वहाँ पर,
1: हाँ बहुत स्पेस है,
0: तो वहाँ पर आप पेड़ वेड़ भी लगा सकते, तो बहुत हरा भरा एरिया है आपका
1: बहुत अच्छा है,
0: और
1: बहुत
0: बस
1: अच्छा
0: उसका
1: वातावरण, बहुत
0: आपको
1: अच्छा है, साफ सुथरा एकदम, शांति है एकदम।
0: जी बिल्कुल उस हरे भरे एरिया को बस आपको वो करना है कि उसका संरक्षण करना है, उसकी सुरक्षा
1: हाँ
0: करनी
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, इस चीज का तो बहुत ध्यान
0: हाँ
1: रखना है।
0: आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं अगर कोई मुरझा रहा है तो उसकी पानी की व्यवस्था आप करें।
1: बिल्कुल जी, सही कहा
0: और
1: आपने।
0: बताइए आज अब गीत कौन सा सुनेंगे राजेंद्र जी?
1: दो बदन पिक्चर का रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, बहुत अच्छा गीत है।
0: जी, फिल्म दो बदन का आपने पसंद किया है ये गीत, तो अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं, आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैडम आपको।

0: हेलो, बीकानेर फार्मिंग प्रोग्राम।
1: जी बिल्कुल सही जगह आपने कॉल किया है। स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो बीकानेर में।
0: मैं जयनार्दन व्यास, कॉलोनी बीकानेर, राजस्थान से, डॉक्टर अशोक कुमार शाही। बस
1: जी अशोक जी कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया है जी। तो
1: जी बताइए।
0: आज कोई मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का एक गाना है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के। तो अभी ये गाना अच्छा भी लगेगा, तो मैं सोच रहा था गीता दत्त जी की बड़ी सुंदर आवाज में गाया हुआ है, तो ये सुना दीजिए।
1: जी बेहद ही खूबसूरत गीत है और इस गीत को सुन के ऐसा लगता है कि सच में बीकानेर में काली घटाएं घिर आई
0: हाँ, आ जाएंगी, नहीं आई तो कम से कम
1: याद तो
0: बीकानेर उसको याद तो
1: जी
0: करे।
1: आप इतनी शिद्दत से याद कर रहे हैं बादलों को, तो निश्चित रूप से हमारे बीकानेर में काली घटाएं उमड़ घुमड़ कर आए हैं और बारिश करें, क्योंकि
0: जी
1: सबको बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है बारिश का।
0: हाँ, बाकी यूपी और उस साइड में तो बारिशें शुरू काफी हो रही हैं।
1: जी सब जगह
0: अयोध्या की तरफ बहुत बारिशें हो रही हैं।
1: जी सब जगह आगाज हो चुका है बारिश
0: हाँ जी,
1: का और कई जगह तो
0: हाँ
1: बाढ़ के हालात भी उत्पन्न हो चुके हैं।
0: हाँ वो भी है, इसके साथ में
1: तो
0: अब
1: वो
0: नेचुरल कैलामिटीज भी आ जाती है ना, अब क्या करें, तब तो
1: जी
0: कोई इलाज नहीं। तो वाहन है आपके पास, टू व्हीलर है, तो बहुत सावधानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढे होते हैं, पानी से भर जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ गड्ढा है। तो

0: उसमें गिरने का बहुत खतरा बना रहता है, और अगर फोर व्हीलर है तो भी बड़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें टूटी फूटी किनारों से भी होती हैं, तो उसमें फिर कभी गाड़ी नीचे उतारते हैं ऊपर करते हैं तो उसका भी खतरा बना रहता है। तो इस तरह से जो खुद की सुरक्षा और अपने वाहन की सुरक्षा को देखते हुए ही चले।
1: जी बिल्कुल अशोक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा करी कि भी बारिश के दौरान विशेष रूप से सुरक्षा का ख्याल रखें, तभी हम पूरी तरह से बारिश का आनंद ले पाएंगे, गरम गरम पकोड़े खा पाएंगे और चाय की प्याली का जो स्वाद है वो भी असली रूप में तभी आएगा जब हम सुरक्षित होंगे।
0: जी
1: जी जी अशोक जी, तो अब हम आपकी फरमाइश को पूरा करते हैं। आपने चुना है फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 का गीत, जो कि बहुत ही खूबसूरत गीत है, और गीत के बोल हैं ठंडी हवा काली घटा। आपने हमें कॉल किया, शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद।

0: ये था हमारा आज का फोन कॉल पर आधारित कार्यक्रम हेलो बीकानेर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम हेलो बीकानेर पसंद आया होगा। यदि श्रोताओं आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो आप अपना फोन कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं बुधवार दिन में 11 से 12 बजे तक। हमारा फोन नंबर है 0151252804 1, 0151252804 2। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम में संयोजन था श्री अमित सिंह का और प्रस्तुति थी श्रीमती बरखा थानवी व्यास की। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर थी मैं आपकी रेडियो साथी कोमल तनेजा। दें इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे

अभी आप सुन रहे थे हेलो बीकानेर, फोन इन पर आधारित ये कार्यक्रम जिसकी सूत्रधार थी श्रीमती कोमल तनेजा, प्रस्तुति श्रीमती बरखा थानवी व्यास और संयोजन श्री अमित सिंह का। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोरा मरु चैनल से बोल रहे हैं।

0: 12 बजने को हैं। सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:05 हो चुके हैं। सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संस्कृति भारती। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कलाकार डॉक्टर आर माधुरी देवी। रात 9:15 पर स्टूडियो से आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार संध्या। रात 9 बजे न्यूज़ एट 9।

रात 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। वाचक स्वर होंगे श्री महेश उपाध्याय के, प्रस्तुति श्रीमती पुनित विश्नोई, संयोजन होगा श्री अमित सिंह का। रात 7:45 पर स्टूडियो से आप सुन पाएंगे सुगम संगीत। 7 बजे ग्रामीण मित्र सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम गूंजे गांव ग्वाड़, फरमाइशी पत्रों पर व ईमेल सेवा पर आधारित ये लोकगीतों का कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति देंगे बजरंग सारस्वत और डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा।

6:45 पर जयपुर केंद्र से आप सुन पाएंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

छह बजे सुन पाएंगे आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। 6:05 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 5:05 पर युवा मित्रों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी होगा। आज की प्रस्तुति देंगी दिव्या सारस्वत और शारदा नैन।

दोपहर 2 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़। 2:15 पर दोपहर समाचार, 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जयपुर से, और 1:05 पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति देंगी डॉक्टर शर्मिला और गीता शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:10

सुगम संगीत में भी आपने सुना पंकज उदास को। आइए सुनते हैं अगली गजल। स्वर हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आगे सुनते हैं पंकज उदास की इस गजल को।

इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला बारू चैनल से बोल रहे हैं। 12:40 हो चुके हैं। सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मनहर केसवर में फिल्म अभिमान से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर हैं लता मंगेशकर के और फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आंधी से अभी आपने गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं, सुनते हैं जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लग्जन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्षों के लिए सहयोग रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री

0: सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत समुद्र से हवा में और समुद्र की सतह तक मार करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। श्री शर्मा कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम से 1258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोरलेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास शामिल है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के संबंध में सुझाव लेने के लिए आज जयपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आज दूसरे दिन आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कल हुई जनसुनवाई में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा ने विभिन्न वर्गों के सुझाव सुने।
1: कल काफी धर्म क्षेत्र के लोगों से और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भी जनसुनवाई में पार्टिसिपेट किया गया था। उनके सुझाव, उनके मतों को और उनकी जिन चिंताओं को हमने कलेक्ट किए हैं। कल कुछ लोग जो जनसुनवाई में नहीं आए थे उनके लिए भी आज हमने जनसुनवाई का ऑप्शन रखा हुआ है। हमारे विज्ञ अधिकारी मौजूद है, उन्होंने जो व्यक्ति हैं, जो आ रहे हैं, जो संगठन आ रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कलेक्ट करके उन सभी संग्रहण करके उनको समिति के समक्ष प्रेषित की जाएगी, उनके ऊपर समिति निर्णय लेगा।
0: विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी जिलों में आज से जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह की भी शुरुआत हुई। जैसलमेर और भरतपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आमजन से जनसंख्या संतुलन, स्वस्थ परिवार और जागरूक समाज के निर्माण की अपील की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संतुलित जनसंख्या ही सशक्त समाज, समृद्ध राष्ट्र और सतत विकास का आधार है। रेलवे जल्द ही आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा संस्करण जारी करेगा। कल आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के अधिकारियों ने जयपुर के एमएनआईटी के विद्यार्थियों को वेबसाइट का बीटा संस्करण दिखाया और उनसे सुझाव लिए। नई वेबसाइट में कैप्चा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया तेज होगी और यात्री की जानकारी सुरक्षित रहने से बुकिंग आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई वेबसाइट को यात्री आरक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है और नया पोर्टल अगले कुछ महीनों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 1:05 होने को हैं। आरंभ होता है महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति दे रही हैं डॉक्टर शर्मिला और गीता शर्मा।

0: कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। और आज का ये अंक लेकर प्रस्तुत हैं आपकी अपनी रेडियो सखियां, मैं गीता शर्मा
1: और मैं डॉक्टर शर्मिला। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: शर्मिला, अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं की समानता की, है ना, कि आज के प्रगतिशील और आधुनिक समाज में महिलाओं को हर दृष्टि से समान समझा जाता है, तो क्या वाकई ये बात सभी के दृष्टिकोण से सही मानी जा सकती है?
1: वैसे बाहरी तौर पर देखा जाए तो जहाँ महिलाएं जो होती हैं अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, वहीं अंदरूनी तौर पर भी आज कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत सारी जो है सम्मान है उनसे वंचित भी नजर हमें आती हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि आजकल महिलाओं ने भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर ली और कुछ कहीं कहीं क्षेत्रों में तो और भी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलती है। लेकिन अक्सर घर का कोई भी सदस्य ही बोल देता है कि तुमने किया ही क्या है, जैसे मतलब खाना बनाना कि बहुत बड़ा बात नहीं मानता है, कि घर का काम जो है वो बड़ी चीज नहीं है, हाउस वाइफ के काम को बहुत बड़ा नहीं माना जाता, कहने का मतलब ये
0: हाँ, छोटा माना जाता है,
1: छोटा माना जाता है कि हाँ मतलब कि ये है कि। और महिलाएं आजकल हालांकि प्रत्युत्तर देना भी सीख गई हैं, लेकिन
0: लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो
1: नहीं देती हैं। ऐसा उनको लगता है कि ये तो खाना बनाना और ये घर के जो काम है वो तो चुटकियों में ही हो जाते हैं, है ना, ऐसा। लेकिन सभी के द्वारा कही बातों की कसौटी पर स्वयं को कसने लगती है, उनको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ और अपने आप को हीन
0: समझने लगती है। सही कह रही हो तुम ये बात, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि भारत के हर घर में सुबह से रात तक चलने वाली रसोई एक ऐसी जीवंत प्रयोगशाला है जहाँ हर दिन असाधारण बुद्धिमता जन्म लेती है ना, और वो भी बिना किसी डिग्री के।
1: बिल्कुल सही, हमारा रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है बल्कि ये तो वो संपूर्ण विश्वविद्यालय है जहाँ हम महिलाएं क्या करती हैं कि बिना कागज और कलम के सिर्फ अपने अनुभव से और अंदाज से अपने कभी देख अपन करते हैं ना ऐसे काम की, हाँ नमक कितना डालना है, चार लोग आगे तो भी अपन को ऐसे माप नहीं लगाना, और घर का दो का भी बन रहा है तो भी अपने को मापने की जरूरत नहीं है, और दस भी आ गए और पचास भी आ गए तो एक मतलब उसका कोई पैमाना नहीं होगा, हाथ से यूं उठा के डाल देंगे चम्मच से और वो सही होता है। तो ये और जब वो इतने ही प्यार से इतने ही अनुभव से बनाती हैं और इतने ही प्यार से जब वो परोसती हैं तो ये सारी कलाएं कला तो कह ही सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल तुम ये सही कर रहे हो, ये कला है और उनकी बुद्धिमता भी है कि जैसा कि अभी तुमने कहा कि न कोई मसाले का उनको अपने अंदाज से करती हैं ना, सब्जी में कितना तेल डालना है या बची हुई सब्जी उसका इस्तेमाल कैसे करना है और गैस की आंच को कब कम और ज्यादा करना है
1: ना, छोटी छोटी चीजें।
0: लेकिन वो देखे कितने आसानी से हम महिलाएं कर लेती हैं, हमें पता है कि कुकर की सीटी कितनी लगानी है, है ना, हमने इसके लिए कोई कोचिंग थोड़ी की है।
1: फिर तो अभी पता है मेरा बेटा अभी ना खाना बना रहा था एक दिन, उसको मुझे लगा कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा बना, तो बोल रहा है कि कब इसको कम करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन को तो ऐसा सोचना भी नहीं पड़ता है ना कि कब कम करना है कब ज्यादा करना है।
0: बिल्कुल, और हम ना इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाते हैं कि हमने कितनी आसानी से गणित को, भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान का संतुलन अपनी रसोई में बड़ी ही आसानी से कर लिया है ना,
1: और हमारी सखियों ने कभी स्वयं को इस नजरिए से देखा ही नहीं होगा, तो चलो क्यों ना सखियों को उनकी और खूबियों से भी मिलवाया जाए गीता, ताकि मतलब वो उनको लगे अपने आप एक गर्व महसूस हो। तो देखो ना आप कैसे एक साथ तीन चार व्यंजन एक साथ बना लेते हैं ना, आजकल चूल्हे भी ऐसे आ गए है ना, और साथ में वो रोटियां बेल भी लेंगी, साथ में बाहर कोई खाना
0: भी सर्व कर देती है,
1: सर्व भी कर देती है, मतलब
0: पूरा घर भी संभाल लेती है,
1: मतलब हुई ना अपने पूरे घर का वो मैनेजमेंट संभालने वाली, मल्टीटास्कर अपन उसको कह सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, वो मल्टीटास्कर तो है ही, लेकिन एक ना कुशल अर्थशास्त्री भी तो है, सीमित बजट में पूरे घर का संचालन कैसे करना है ये हमसे बेहतर और कौन कर सकता है।
1: बिल्कुल, और सबका मन पढ़ने में भी तो हमसे बेहतर है, कौन जो है वो क्या पसंद करता है, किसका मन कैसा है, कौन बीमार है, किसको हल्का भोजन चाहिए, हम वो ये अच्छी तरह से जानती है ना, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं को भी बड़े अच्छे संभालती है।

0: कि चलो ठीक है मेरा बच्चा ये नहीं खाता तो आज घर में ये मान लो लौकी की सब्जी बनी है और बच्चा नहीं खाता तो चलो ठीक है दो आलू छोंक दिए, है ना, मतलब इस तरह की कलाएं
1: ये सिर्फ महिलाएं जानती हैं। तो सखियों, आपने चाहे डिग्री ली हो या नहीं ली हो, अंग्रेजी भी आपको चाहे ना आती हो और कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी बेशक आपने न लिया हो, फिर भी रसोई संभालने वाली स्त्री किसी भी प्रशिक्षित मैनेजर से कम नहीं है। इसलिए स्वयं को कम मत आंकिए और न किसी को स्वयं को कसौटी पर कसने का हक दीजिए। बस यही सोचिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है और अपने दिल की पुकार को सुनिए कि वो आपसे क्या कह रहा है।

माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: शर्मिला, जैसे अभी हम बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की, उनके अधिकारों की, है ना, तो देखा जाए तो ये प्रश्न हमारे समाज में प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अनेक लेखकों साहित्यकारों ने अपनी कलम की नोक से केवल शब्द नहीं बल्कि समाज की वर्तमान व्यवस्था को भी परिलक्षित किया है।
1: बिल्कुल, तुम लेखक और साहित्यकारों की बात कर रही हो तो क्योंकि ना ये जो समाज में देखते हैं, जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, जो चीज़ें इनको नज़र आती हैं, वही अपने साहित्य में उसको प्रस्तुत भी करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की भी बात कर लेते हैं जिसने न केवल साहित्य के क्षेत्र में अपना परचम लहराया बल्कि एक बहुत दिग्गज कथाकार भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक भी इस साहित्यकार को माना जाता है।
0: जी हाँ सखियों, हम बात कर रहे हैं साहित्यकार भीष्म साहनी की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उनके साहित्यिक और कलात्मक सफर की बात की जाए तो उन्होंने विभाजन के दर्द और संघर्ष को बहुत ही करीब से देखा था और वही उनकी रचनाओं का मुख्य आधार भी बना।
1: बिल्कुल, क्योंकि गीता होता पता है क्या है, क्योंकि मैंने अभी जो जैसे आपको बताया था ना कि भी साहित्यकार अपने साहित्य में क्या लेता है, जो समाज में
0: जो
1: देखता
0: देखता
1: है, और ऐसी भावना, जैसे हमारे और साहित्यकार में अंतर पता है क्या होता है, भावनाएं हम सबके पास होती है लेकिन साहित्यकार के पास वो भावनाएं होती हैं जो ओवरफ्लो कहते हैं ना।

0: किसी गिलास में पानी डालें तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, वैसे उनकी भावनाएं किसी समाज की ऐसी स्थिति को देख करके जब वो ओवरफ्लो हो जाती है ना तो वो साहित्य का रूप ले लेती है। तो ऐसे ही प्रसिद्ध उपन्यास उनका साहनी जी का बहुत ही एक है तमस नाम से, है ना, वो सबने मोस्ट ऑफ पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो पढ़ना चाहिए ऐसे, मतलब उसके ऊपर एक दूरदर्शन पर नाटक भी आता था, एक धारावाहिक बहुत सुंदर प्रस्तुत होता था और मेरे हिसाब से हम बहनों के जहन में आज भी वो बसा होगा ना,
1: बिल्कुल सभी ने उसमें देखा
0: होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि भारत का बंटवारा जब हुआ था उसमें जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उन सबका इतना भयानक और दिल दहला देने वाला समय का चित्रण किया है ना कि जिसको हम मतलब ऐसा देख सकते हैं कि उन्होंने वास्तव में ये वही लिख सकता है जिसने ऐसे इतिहास को भोगा हो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, और उन्होंने जो नारी की जो उन्होंने बात की है तो नारी मुक्ति की समस्या को भी उन्होंने अपने चित्रण में दर्शाया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी के व्यक्तित्व विकास, स्त्री शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ उसकी सम्मानजनक स्थिति का भी समर्थन किया है।
0: बिल्कुल, और उनकी कहानियां काफी हैं जिनके अंदर उन्होंने अंतर विरोधों का, जीवन के द्वंद्वों का, है ना, विसंगतियों से जकड़े मध्यम वर्ग के साथ ही निम्न वर्ग के जीने की इच्छा और उसके संघर्ष को भी दिखाया है। सबसे ज्यादा दुखी मध्यम वर्ग होता है, है ना, क्योंकि ऊपर वाला तो इच्छा करता ही नहीं है, पहले ही पूरी जाती है, और निम्न वर्ग इच्छा ही नहीं करता बेचारा, क्योंकि उसको होता ही नहीं है। तो निम्न जो मध्यम वर्ग का संघर्ष है ना वो उन्होंने अपनी कहानियों में बड़ा जबरदस्त प्रस्तुत किया है, उनकी आशाओं की, उनकी आकांक्षाओं की, उनके दुख को, उसके पीड़ा को। साहनी जी ने अपने उपन्यासों से ओझल होने ही नहीं दिया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उनकी लेखनी समाज के इर्द गिर्द ही हमें रची बसी नजर आती है।
1: बिल्कुल, और जब तुमने इतनी सारी बात की तो उनके जीवन परिचय पर भी अगर हम थोड़ा सा नजर डालें तो हमें पता चलता है कि वे मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे हैं और वामपंथी विचार धारा से जुड़े होने के साथ भी वे मानवीय मिलनों को उन्होंने आंखों से कभी भी ओझल नहीं होने दिया। उन्हें उनके लेखन के लिए तो हम याद करते ही हैं, लेकिन उनकी सहृदयता के लिए भी वे चिरस्मरणीय हैं।
0: बिल्कुल, साहित्यिक सफर के अलावा अगर बात की जाए तो साहनी जी भारतीय जन नाट्य संघ से भी जुड़े रहे और कई नाटकों में उन्होंने अभिनय और निर्देशन भी किया था। हम अगर बात करें 1957 से लेकर 63 तक तो उन्होंने मास्को के अंदर एक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में अनुवादक के रूप में, ट्रांसलेटर के रूप में भी काम किया था, जहां उन्होंने रूसी भाषा की कई किताबें थी जिनका हिंदी में अनुवाद किया ताकि हम उस साहित्य को, रूसी का साहित्य जिसमें रूस के अंदर क्या किस तरह का साहित्य है उसका भी उन्होंने हिंदी में हम लोगों के लिए अनुवाद किया, ये भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: और जब उनकी कृतियों की हम बात कर रहे हैं तो उपन्यास में तमस झरोखे, बसंती और जो उनके नाटक हैं उनमें हानूस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, और जो कहानियां हैं उनमें भाग्य रेखा, निशाचर, वांगचू और चीफ की दावत अत्यंत लोकप्रिय रचनाएं हैं। और पता है उन्होंने सिर्फ लेखा ही नहीं बल्कि कई फिल्मों में भी काम किया जिनमें मोहन जोशी, हाजिर हो, लिटिल बुद्धा, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर भी शामिल हैं।
0: बिल्कुल सही बताया तुमने। पता है ये चीफ की दावत जिस कहानी की तुमने बात की ना तो इसमें तो हमारी आज की पीढ़ी को बताया गया कि किस तरह से हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, कैसे एक माँ जिस पढ़े लिखे बेटे को ऐसे समझ नहीं आता। तो ये वास्तव में सामाजिक मूल्यों को कहीं ना कहीं दर्शाती हुई उनकी कहानियां हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, हम बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए ऐसे। और साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कारों की अगर हम बात करें उनकी तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ उनको शिरोमणि लेखक सम्मान, और चाहे लोटस पुरस्कार हो, चाहे एफ्रो एशियन का राइटर्स एसोसिएशन की ओर से एक सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया जाता है वो भी उनको मिला है, और भारत सरकार जो हमारे पद्म भूषण पुरस्कार देती है उससे भी उनको सम्मानित किया जा चुका है।
1: बिल्कुल, तो सखियों मानवीय गुणों से ओतप्रोत सहृदय साहित्यकार को 87 वर्ष की आयु में 11 जुलाई 2003 को हम सभी ने खो दिया। लेकिन सखियों ये वो हीरे हैं जो बेशक आंखों के सामने ना हो लेकिन उन्होंने अपनी चमक को अपनी कलम के माध्यम से सर्वत्र बिखेरा है और हम सभी को एक अभूतपूर्व साहित्य से, एक अभूतपूर्व लेखनी से अवगत कराया है। जी हाँ सखियों, साहित्य के भीष्म से।
0: बिल्कुल सखियों, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को आदत डालें उन साहित्य को पढ़ने की, और हमें भी डालनी पढ़ना चाहिए। अगर ऐसे साहित्य को हम पढ़ेंगे तो समाज में उच्च मूल्यों की स्थापना हम जरूर कर पाएंगे।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है।

0: विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: पता है गीता, अपन महिलाओं के इस कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां मनोरंजन के साथ साथ उनको ऐसी प्रतिदिन क्या हो रहा है, मतलब कौन सा दिवस है, इसकी भी बहुत अच्छी सी जानकारी हम देते हैं। तो आज जो है विश्व जनसंख्या दिवस, जो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों और उनके सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ना, उसकी भी हम अपनी बहनों को बात बताएंगे।
3: अच्छा।
2: क्योंकि जो आजकल आबादी इतनी बढ़ रही है, इसकी लिए स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 में दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी।
3: बिल्कुल शर्मिला, और सखियों को बता दें कि इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए।
2: बिल्कुल।
3: पता है पहले क्या होता था,

0: बढ़ रही है। इसकी लिए स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी।
1: बिल्कुल शर्मिला, और सखियों को बता दें कि इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए।
0: बिल्कुल,
1: पता है पहले क्या होता था कि जो पुराने समय में तो बड़े परिवार आम बात होती थी, घर में खुशहाली होती थी, सभी मिल बांट करके रहते थे, लेकिन आज समय बदल गया है।
0: बिल्कुल, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो गई है, हाँ, संसाधन बहुत
1: संसाधन
0: कम
1: भी सीमित हो गए हैं, तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर परिवार को ये अधिकार है कि वो तय करे कि उसका परिवार कितना बड़ा हो, मतलब अगर बेटे बेटी में फर्क नहीं समझेंगे या ये चीजें अगर समाज के अंदर शिक्षा आएगी तो इनसे लोगों की बुद्धि का विकास होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की नींव है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, और जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं अपनी सखियों से है ना, तो सिर्फ हम जनसंख्या तक ही सीमित नहीं रहेंगे,
0: हाँ,
1: है ना,
0: सही है,
1: हम माँ का और उनकी बेटी के बारे में भी बात करेंगे,
0: मतलब मातृत्व की तुम बात करना हाँ, चाहती हो, उनके मतलब उसके स्वास्थ्य की भी हम बात करेंगे, है ना, कि मातृत्व स्वास्थ्य कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो उसका परिवार भी स्वस्थ होगा, क्योंकि माँ पूरे घर को संभालती है, उसकी पूरी आधारशिला माँ होती है, है ना, अगर माँ को सही समझ है तो उसका मतलब परिवार नियोजन का भी ध्यान रखेगी वो, तो जनसंख्या से रिलेट हो गया वो भी, है ना, तो वो खुद भी तय कर सकती है कि उसके कितने बच्चे हों, कैसे हों और कब हों, ये सारी चीजें भी बहुत आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा बल्कि हमें बच्चों को बेहतर इंसान भी बनाना है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी
1: हैं। तो ये सभी कुछ हम अपनी बहनों को अपनी वार्ता के जरिए बताते हैं,
0: हाँ, मतलब है एक वार्ता, तुम ये कहना चाहती हो अपनी सखियों को हम एक वार्ता सुनवा दें, है ना।
1: बिल्कुल, तो सखियों वार्ता का विषय है जनसंख्या संतुलन एवं जीवन की गुणवत्ता, और वार्ताकार है श्रीमती देवेंद्र कौर।
2: एक थाली में 6 रोटियां हैं और खाने वाले 4 लोग, सबका पेट भरेगा, लेकिन वही 6 रोटियां अगर 10 लोग खाएंगे तो ना पेट भरेगा ना सेहत बनेगी। बस यही कहानी हमारे देश की है। आज इसी थाली और खाने वालों के संतुलन पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या संतुलन क्या है? जनसंख्या संतुलन का सीधा मतलब है देश के संसाधन और लोगों की संख्या में सामंजस्य। भारत की आबादी 2026 में 144 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। हम चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ संख्या नहीं है, प्रॉब्लम है अनियंत्रित वृद्धि। हमारे पास पानी सीमित है, जमीन सीमित है, स्कूल कॉलेज सीमित है, लेकिन अगर हर साल 1.5 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे तो ये सीमित संसाधन सब में कैसे बांटे जाएंगे? संतुलन का मतलब रुकना नहीं है, संतुलन का मतलब है समझकर बढ़ना। जैसे खेत में पर्याप्त बीज डालोगे तो फसल अच्छी होगी, ज्यादा बीज डालोगे तो सब पौधे कमजोर रह जाएंगे, क्योंकि सभी बीजों को ना तो पर्याप्त पानी मिलेगा और ना ही जड़ों को पर्याप्त जमीन। अब देखते हैं संतुलन बिगड़ता है तो जीवन की गुणवत्ता पर क्या असर आता है। प्रकृति पर बोझ बढ़ रहा है, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा पानी लगेगा, ज्यादा बिजली लगेगी और ज्यादा जंगल कटेंगे। जंगल कम होते जा रहे हैं और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादा जनसंख्या से ट्रैफिक, झुग्गी झोपड़ियां, पानी की लाइनें, एक कमरा जिसमें 8-8 लोग रहते हैं, प्राइवेसी खत्म, सेहत खत्म, यही जीवन की गुणवत्ता गिरना है। तो जीवन की गुणवत्ता है क्या? जीवन की गुणवत्ता सिर्फ बड़े कार घर नहीं है। गुणवत्ता है सुबह उठकर सांस लेने को साफ हवा। गुणवत्ता है बच्चे पर स्कूल में टीचर का पूरा ध्यान। गुणवत्ता है बीमारी में डॉक्टर के पास तुरंत इलाज। गुणवत्ता है किसान की फसल का सही दाम। गुणवत्ता है बुजुर्गों के लिए

इज्जत और सुरक्षा। गुणवत्ता है रात को बिना डर के सोना। यह सब तभी मुमकिन है जब लोग कम हो और संसाधनों पर बोझ कम हो, जब हर बच्चे को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आसानी से मिले। अब सवाल यह है कि करें क्या? समस्या है तो समाधान भी है। सरकारी स्तर पर समाधान निकाले गए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी तो शादी समय से होगी, दो बच्चों का फैसला खुद लेगी। आयुष्मान भारत और मिशन परिवार विकास के तहत मुफ्त स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की जानकारी गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। कम लोग हों लेकिन हुनरमंद हों। दो हुनरमंद हाथ 5 अनपढ़ हाथों से ज्यादा ही कमाएंगे। समाज और पारिवारिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? हम दो हमारे दो, यह नारा पुराना जरूर है लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचिए, दो स्वस्थ पढ़े लिखे बच्चे या 5 कमजोर बच्चे। बेटी और बेटे में भेद न कीजिए। जब बेटी को बोझ नहीं समझा जाएगा तब आबादी अपने आप संतुलित होगी। 21 साल से पहले शादी न हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। निर्णय आपके हाथ में है। छोटा परिवार सुखी परिवार, यह स्वार्थ नहीं समझदारी है। हमारे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पानी की कमी तो पहले से ही है। थार के इलाके में अगर आबादी तेजी से बढ़ेगी तो सीमित संसाधन और सीमित रह जाएंगे। अब प्रयास तो कई दशकों से किए जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? पिछले 10 सालों में राजस्थान का जन्म दर 3.1 से घटकर 2.4 हो गया है। मतलब हम सही रास्ते पर हैं, बस गति तेज करनी है। महिलाओं की बात करें तो बहनों, घर की बुनियाद ही हम हैं और उस घर के भविष्य का फैसला भी हमारे हाथ में है। भारत में आज भी ज्यादातर घरों में यही कहानी है, कम संसाधन ज्यादा जिम्मेदारी। और सबसे ज्यादा बोझ किसके कंधों पर आता है? माँ के। जनसंख्या संतुलन महिलाओं का मुद्दा सबसे पहले है। 4 से 5 बच्चे होंगे तो स्कूल की फीस, किताबें, कपड़ा किसको दोगी? एक भी पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन दो होंगे तो दोनों को अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना दे सकेंगे। एक डॉक्टर बनेगा, एक टीचर, या जो वे बनना चाहें। ज्यादा बच्चे होने पर सबसे पहले बेटी की पढ़ाई रुकती है। तू घर संभाल, भाई को पढ़ने दे, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से बहनों, छोटा परिवार बेटी को भी उसका हक दिलाता है। जब बच्चे कम होंगे तो माँ के पास अपने लिए भी समय होगा। थोड़ा आराम कर लेगी, थोड़ा रेडियो सुन लेगी, कुछ सिलाई बुनाई कर लेगी। जीवन की गुणवत्ता यही है बहनों, सिर्फ काम करते रहना नहीं। अब कुछ बातें साफ कर ले बहनों, जो गांव में अक्सर सुनी जाती है, जैसे परिवार नियोजन से कमजोरी आती है। नहीं, परिवार नियोजन के तरीके तो माँ को स्वस्थ रखते हैं। बेटा ही वंश चलाता है? नहीं, बेटी भी तो वंश चलाती है और देश भी। आज कल्पना चावला से लेकर सरपंच बेटी तक सभी बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। बेटा और बेटी एक समान है। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा हाथ तो ज्यादा कमाई, ऐसा नहीं है। 5 अनपढ़ हाथों से 2 पढ़े लिखे हाथ ज्यादा कमाते हैं। बहनों याद रखो, घर की मंत्री आप हो। आप फैसला लोगी तभी बदलाव आएगा। पहले बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का अंतर हो तो माँ का शरीर, समय, सब दूसरे बच्चे को पूरा मिलेगा। बेटी को पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो कल खुद समझदार माँ बनेगी, वो दो बच्चों का फैसला खुद लेगी। यही असली जनसंख्या नियंत्रण है। अपने बीकानेर के पास कई गांवों में

0: में महिलाओं के ग्रुप बने हैं सखी सहेली के नाम से। ये सखी सहेलियां गांव की महिलाओं की मदद करती हैं। इन सभी प्रयासों का ही नतीजा है कि जहां पहले हर घर में 5 से 6 बच्चे थे, अब वहां 2 से 3 हैं। घर में पानी, आटा, तेल सब आसानी से चलता है, बच्चे स्कूल जाते हैं। यह बदलाव हम महिलाओं ने ही तो किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के इस विषय पर मैं कविता की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जनसंख्या नियंत्रण बोझ नहीं, जनसंख्या नियंत्रण बोझ नहीं, माँ के स्वास्थ्य का वरदान है। छोटा परिवार कंजूसी नहीं, बच्चों के सपनों का सम्मान है। बेटी का पढ़ना माँ का आराम, बेटी का पढ़ना माँ का आराम, यही जीवन की गुणवत्ता का नाम है। अंत में एक कहानी श्रोताओं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, राज्य बड़ा हो या प्रजा सुखी हो, क्या जरूरी है? बीरबल ने कहा, हुजूर, 100 कमजोर सिपाही 10 बहादुर सिपाही से बेहतर हैं। यही बात देश पर लागू होती है। 144 करोड़ लोग हों, लेकिन ज्यादातर अशिक्षित, बीमार, बेरोजगार हों, तो क्या फायदा? लेकिन आबादी नियंत्रण में हों, सब पढ़े लिखे हों, स्वस्थ हुनरमंद हों, तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसीलिए संख्या कम करना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है गुणवत्ता बढ़ाना। कम बच्चे लेकिन संस्कारी बच्चे, छोटा परिवार लेकिन बड़ा सपना। आज से ही संकल्प लीजिए, अपने पड़ोसी रिश्तेदार से इस विषय पर बात जरूर करेंगे, क्योंकि जनसंख्या का बोझ कम करना देश की सेवा है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना अपने परिवार से प्रेम है।
1: तो सखियों, अभी हमने वार्ता सुनी जिसका विषय था जनसंख्या संतुलन एवं जीवन की गुणवत्ता। वार्ताकार थी श्रीमती देवेंद्र कौर। तो कैसे हमारे देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, कैसे जनसंख्या को हम संतुलित रख सकते हैं, ये और हमारे लिए कितना ज़रूरी भी है, ये हमने इस वार्ता में सुना। मिलते हैं थोड़े से इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जा...

0: शर्मिला वो गीत याद है तुम्हें?
1: कौन से गीत की बात कर रही हो गीता तुम?
0: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो,
1: अच्छा
0: भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी
1: मगर मुझको लौटा दो, वही बात कर रही हो ना?
0: बचपन का सावन, हाँ। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
1: अरे कैसे भूल सकती हूँ मैं इस खूबसूरत गीत को, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यही तो हमारे बचपन की सबसे प्यारी कहानी थी ना, जहाँ ना कोई मोबाइल था, ना कोई स्क्रीन का शोर था, बस दोस्तों की टोली थी और हंसी का जोर था।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कैसे हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे खिलौनों से ही खुश हो जाया करते थे, है ना। और हमारे खेल भी आज की तरह महंगे नहीं होते थे। छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा, खो खो, सतोलिया, लंगड़ी टांग, रस्सी कूदना, ये सब हमारे फेवरेट गेम हुआ करते थे।
1: अरे और इन गेमों के नाम से मुझे एक याद आ गया कि आज तो कैसे किचन सेट वगैरह बच्चे लेके आते हैं। हम तो पता है दिवाली के जो दिए बच जाते थे ना, मतलब उनको इकट्ठा करके दिवाली के बाद जब माँ रख देती थी, तो हम तो उन्हीं को ही किचन सेट बना लेते थे, उसी में ही सब्जी बना लेते, और मतलब घर में बैठ करके छोटे लूडो वगैरह कोई घर में ला देता था, कैरम वगैरह, या अंताक्षरी खेल लेते थे सारे परिवार के लोग एक साथ बैठ करके। कहने का मतलब है कि सारे साथ में खेलते थे, जिससे प्रेम भी बढ़ता था, है ना। और बच्चे पता है मानसिक रूप से स्वस्थ भी होते थे, है ना। और आउटडोर गेम्स के जरिए बच्चों में मेल जोल, भाईचारा और टीम की भावना का भी विकास होता था, और बच्चे हष्ट पुष्ट भी रहते थे इन सब चीजों से।
0: बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन हम आज का समय देखें तो आज महंगे खिलौने हैं, सुविधाएं भी अनगिनत हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बचपन की मुस्कान हमें कम दिखाई देती है। तो कैसे उस मुस्कान को हम वापस लेकर के आए, ऐसा क्या करें कि आज का बचपन पहले की तरह खिलखिला उठे, मुस्कुरा उठे?
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि बचपन सिर्फ एक उम्र का पड़ाव नहीं है, बल्कि मासूमियत, सादगी और सच्ची खुशियों का नाम है। इसलिए उसे बड़े ही प्यार, संवेदना और नरमी के साथ हमें संवारना है। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें बच्चों को ना वीडियो गेम या हम ये मोबाइल जो देते हैं ना समय बिताने के लिए, कि माँ फ्री होने के लिए कई बार देती है कि चलो थोड़ी देर फोन चलाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी, मतलब अपनी सुविधा के लिए सही वो बच्चों को फोन दे रही है या जो भी, तो इन सब चीजों से हाँ दूर करना होगा। हमें बच्चों को पारंपरिक खेलों से जोड़ना होगा, है ना, मतलब कहने का प्रकृति से जोड़ना होगा, है ना। कभी छुट्टी के दिन उनके साथ इस तरह के खेल अगर आप खेलोगे तभी तो वो सीखेंगे ना। पता है हम ना माचिस की डिब्बी से ऐसे इंटे बनाते थे, मिट्टी गीली करके और माचिस की डिब्बी को सांचा बना लेते। तो ये मैंने अपने बेटे को बनाई ना, बताई कि मैं हम इस तरह से खेलते थे, तो उसने भी मेरे से पूछा कि मम्मा मैं भी बनाऊंगा। तो है ना, कहने का मतलब है कि हम अगर ऐसे काम करेंगे ना तो बच्चे भी उन कामों को सीखेंगे। हम अगर पूरा टाइम स्क्रीन से चिपके रहेंगे, बच्चों से अगर फोन छुड़वाना है तो पहले हमें भी
0: हमें
1: उसको छोड़ना होगा।
0: मतलब कहने का है कि भारतीय खेल कैसे सादगी और समझदारी के साथ पत्थर, डंडे, रेत या कल्पना से भी बनाए जा सकते हैं, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। और इसको सिखाने की शुरुआत हमें अपने परिवार से ही करनी होगी, है ना। हम खुद करेंगे, हमारे हम माता पिता करेंगे, दादा दादी, घर के सभी सदस्य अगर बच्चों को के साथ में इन खेलों को खेलेंगे, उनके बारे में बताएंगे या उनसे जुड़ी अपनी रोचक कहानियां जो उन्होंने की थी उनको सुनाएंगे, तो बच्चे पारंपरिक खेलों की ओर
1: मतलब झुक पाएंगे। बिल्कुल, और स्कूल और कॉलेज में भी ऐसे हम कदम उठा सकते हैं, और कई तो होते भी हैं आजकल, खेल दिवस मनाते हैं, है ना, या वार्षिक उत्सव हो गया, या छुट्टी के समय उनको पारंपरिक खेलों की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित कर सकते हैं। तो हम बच्चों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही है, हमारे पारंपरिक खेल हमारी संस्कृति के अमूल्य धरोहर।

0: गीता सखियों से दूर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय जो है वो हमें बार बार जो है वो कह रहा है कि नहीं बस अब अलविदा का समय आ गया, लेकिन फिर से मिलने के वादे के साथ हम अपनी सखियों से लेते हैं इजाजत। मैं डॉक्टर शर्मिला
1: और मैं गीता शर्मा लेते हैं यहां से विदा। नमस्कार।

अभी महिला सुन रही थी अपना विशेष कार्यक्रम महिला जगत। आज की प्रस्तुति दे रही थी गीता शर्मा और डॉक्टर शर्मिला। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। सुनते हैं दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज़।

0: और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टेन रेजरी हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं।
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defense force by strengthening both conventional defense capabilities and advanced

0: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर

0: नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में स्मॉल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आपने एक गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिल्म अमृत से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म बेताब से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है कुमार शानू और साधना सरगम के। फिल्म का नाम है जुर्म।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रथम प्रसारण के कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 5 बजने को है। हमारी आज की दूसरी और सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
3: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया।

0: श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुतनगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नजर ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के इस समय 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी बीकानेर के युवाणी कार्यक्रम में हमारे सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी युवा साथी दिव्या।
1: और मैं हूं शारदा ने। हमारे सभी युवा दोस्तों को प्यार भरी राम राम और शुभ संध्या। दोस्तों, युवाणी यानी आपकी अपनी आवाज़, आपके सपने और आपके भविष्य की चर्चा।
0: और जब बात हम युवाओं की होती है, हमारे भविष्य की होती है, तो आज के इस दौर में तकनीक पर बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारा पहला विषय यानी आज की बात है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी बढ़ती हुई निर्भरता।
1: दोस्तों, आज AI हमारे जीवन के हर हिस्से में आ चुका है। सुबह के अलार्म से लेकर सोशल मीडिया की रील्स तक सब कुछ AI ही तय कर रहा है। यहाँ तक कि हम क्या देखना पसंद करते हैं ये भी AI को पता है।
0: तो शारदा, आपने कभी इस बीच में सोचा है कि इसका यानी AI का हमारी सोच पर क्या असर पड़ रहा है? आज युवाओं का कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई ईमेल लिखना हो या कोई नया आइडिया सोचना हो, वो झट से AI टूल खोल लेते हैं।
1: हाँ दिव्या, बिल्कुल सही कहा तुमने। युवा आजकल खुद दिमाग लगाना बहुत कम कर दिया है। अपनी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से युवाओं की अपनी मौलिक रचनात्मकता यानी ओरिजिनल क्रिएटिविटी कम होती जा रही है।
0: और इससे सबसे बड़ा संकट जो आजकल हम युवाओं के दिमाग में मंडराता रहता है, वो है नौकरियों का संकट। यानी कि आजकल ये डर चारों तरफ से हमें घेर रहा है कि कहीं AI युवाओं की जॉब को प्रभावित तो नहीं कर रहा, या सीधी बात में कहूँ तो AI कहीं हमारी जॉब खा तो नहीं रहा है।
1: ये डर बिल्कुल सच है। कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, कस्टमर सर्विसिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में अब इंसानों की जगह AI सॉफ्टवेयर ले रहे हैं। कंपनियां अब भारी भरकम सैलरी देने के बजाय एक क्लिक पर काम करवाना चाहती है।
0: वैसे देखें तो ये भी जायज है। देखो शारदा, जो काम पहले 10 लोग मिलकर कई दिनों में खत्म करते थे, वो अब कुछ ही सेकंड्स में AI झट से कर देता है।
1: बिल्कुल सही।
0: इससे कॉलेज की जो पढ़ाई पूरी करके निकलने वाले फ्रेशर्स हैं, जो मार्केट में अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, उनकी जो लगातार देख रहे हैं कि रोजगार आजकल बेहद कम हो गया है, ये वाकई में एक चिंता का विषय है।
1: बात तो तुम्हारी सही है दिव्या, लेकिन दिव्या हमें इसे

0: इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। इस तकनीकी बदलाव की कड़वी सच्चाई को समझकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: सही कहा, और साथियों इतिहास में गवाह है कि जब देश में पहली बार कंप्यूटर आया था तब भी कई लोगों के दिमाग में यही डर था कि लाखों लोगों की नौकरियां अब चली जाएंगी, पर समय के साथ कंप्यूटर ने आईटी सेक्टर्स में करोड़ों लोगों के नए रोजगार पैदा किए और आज कंप्यूटर हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है।
0: सही कहा, एआई के साथ भी यही हो रहा है। यह पुरानी और पारंपरिक नौकरियां जरूर खत्म कर रहा है, लेकिन ये एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स और एलएलएम इंजीनियर्स जैसे बिल्कुल नए क्षेत्र में नौकरियों के नए दरवाजे भी खोल रहा है।
1: यानी कि सीधी बात कहें तो ये है कि नौकरी उसकी नहीं जाएगी जिसे अपना काम अच्छे से आता है, बल्कि नौकरी उसकी जाएगी जो समय के साथ खुद को बदलना नहीं चाहता। आज के दौर की मांग है साथियों अपस्किलिंग, यानी कि नई चीज़ों को सीखें, उन्हें ग्रहण करें, अपनाएं, अपने जीवन में उतारें, क्योंकि परिवर्तन ही आविष्कार की जननी है।
0: बिल्कुल, युवाओं को अब केवल किताबी ज्ञान के भरोसे नहीं बैठना है, उन्हें यह सीखना होगा कि इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वे अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जो युवा एआई को चलाना सीख जाएगा वह कभी पीछे नहीं छूटेगा।
1: ऑल ओवर बात ये है साथियों कि एआई का गुलाम हमें नहीं बनना है, बल्कि हमें तो उसका मास्टर बनना है, हमें एआई स्टार बनना है, क्योंकि एआई को हमने बनाया है, एआई ने हमको नहीं। और देखें तो एआई के पास ढेर सारा डेटा हो सकता है, पर उसके पास कमी है तो इंसानी दिमाग की, इंसानी भावनाओं की, और सही गलत लेने का जो डिसीजन है वो नहीं ले सकता।
0: बिल्कुल, अपनी इसी इंसानी खूबी और सूझबूझ को हमें निखारना है। एआई को अपना दोस्त बनाइए, अपना रिप्लेसमेंट नहीं।
1: तो अब चलिए चलते हैं चर्चा की इस पड़ाव से निकलकर सुनहरे गीत की तरफ।

0: पहला आप बोलो।
1: साथियों, गीत से मोड़ कर अब रुख लेते हैं क्विज सेशन का। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे पूछेंगे दो सवाल, जिनके जवाब हम कार्यक्रम के अंत में आपको देंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल आपसे ये है कि भारत की जनगणना 2027 में पहली बार किस सामाजिक पहलू का भी डेटा एकत्र किया जाएगा। मैं अपने सवाल को दोहराती हूँ, भारत की जनगणना 2027 में पहली बार किस सामाजिक पहलू का भी डेटा एकत्र किया जाएगा।
2: दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया एआई मिशन का नेतृत्व किया है। मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया एआई मिशन का नेतृत्व किया है।
1: इनके जवाब आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अंत में, तो बने रहिए कार्यक्रम के तरफ।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: दिव्या, आज 11 जुलाई है और दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है।
3: जी साथियों, और आज हमारे इस कार्यक्रम में भी हम समझेंगे, चर्चा करेंगे कि किसी भी देश के लिए संतुलित जनसंख्या का क्या महत्व है। साथियों देखिए, जनसंख्या किसी भी देश की असली ताकत होती है, बशर्ते वो संतुलित हो। संतुलित होने से ऐसा नहीं है कि जनसंख्या संतुलित हो, संतुलन होना चाहिए हमारी मानसिकता का, हमारे मानवीय संसाधनों का, क्योंकि जब आबादी, हमारी भावनाएं, हमारे विचार नियंत्रण में होते हैं तो देश के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिलती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, साफ पानी मिलता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे युवाओं के दिमाग में हमेशा रहता है, रोज़गार, इसके बराबर मौके मिलते रहते हैं।
2: बिल्कुल, संतुलित जनसंख्या का महत्व इस बात से है कि इससे देश में गरीबी कम होती है, जीवन का स्तर सुधरता है और हमारे पर्यावरण भी पर भी दबाव नहीं पड़ता। लेकिन आज हमारे सामने चुनौती ये है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो चलिए आज इसके कुछ मुख्य कारणों पर भी बात करते हैं।
3: देखो, आबादी तेज़ी

0: से बढ़ रही है एक समस्या नहीं है शारदा, समस्या है हमारा, हमारा जो माइंड सेट है. देखो जनसंख्या पहले भी इतनी थी, आज भी इतनी है, और हालांकि देखे तो आज पुराने जमाने के मुकाबले देखे तो आज के टाइम में लोग कम जीवन जी पा रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारा खान पान ऐसा हो गया, कुछ हमारी दिनचर्याएं ऐसी हो गई, लेकिन संसाधन हमारे पास कम है, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि कम से कम 2-4 बेटे तो हर घर में अवश्य होने चाहिए. अभी ग्रामीण परिवेश की बात करें तो हर घर में अगर एक बेटा हो गया तो एक बेटे से क्या होगा, हमारा इतना बड़ा घर परिवार है, खेत खलिहान है, व्यापार है, कौन संभालेगा, कम से कम 3-4 बेटों की चाहत. और अगर किसी के भाई भगवान की जो भी कृपा रहती है, इच्छा रहती है, बेटा नहीं हो पा रहा है तो उसके चक्कर में बस परिवार नियोजन कोई नाम चीज़ नहीं है उनके दिमाग में, बस बेटे का इंतज़ार करते संतान उत्पत्ति करना. तो इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण देखें तो जागरूकता की कमी हो गई, जैसे कि अशिक्षा है हमारे समाज में. कई ऐसे ऐसे जैसे मैंने बताया परिवार नियोजन के हिस्से के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और कई तो ऐसे लोग हैं जो इन्हें अपनाने से भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं.
1: बिल्कुल. और बढ़ती आबादी की इस चुनौती को हमें सिर्फ सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमारी जागरूकता की कमी को पूरा करना चाहिए. और हमारी जो रूढ़िवादी सोच है, जैसे कम उम्र में शादियां होने की और जो बेटे की चाहत है, आज भी परिवारों में बेटे की चाह में परिवार बड़ा होता चला जा रहा है. युवाओं को इस सोच को बदलना होगा, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर युवाओं को आगे आना होगा और समाज में इस बात की जागरूकता फैलानी होगी. जब देश का युवा जागरूक होगा तभी संसाधनों का सही संतुलन बनेगा.
0: संतुलन यही है कि सिर्फ जनसंख्या संतुलन जरूरी नहीं है, संतुलन की बात करें तो दिमाग का भी संतुलन बनाए रखना है. जैसे कि ये जो मानसिक विकृति एक समझ लें कि बस बेटा होना ज़रूरी है, नहीं, आज हर क्षेत्र में बेटियां भी आगे बढ़ रही है. तो जैसे हम शुरू से कोड पढ़ते आ रहे हैं, हम दो हमारे दो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ये दो वाला तो आंकड़ा बहुत नीचे है. रियली कोई एक या दो परिवार मिलेंगे जिनमें हम दो हमारे दो फैमिली होगी, बाकी सब परिवार में देखें तो 8-10 बच्चे होते हैं. तो ना तो फिर उनके संसाधनों की आपूर्ति होती है, ना ज़रूरतें पूरी होती है, इसी वजह से जनसंख्या हमें लगता है अनकंट्रोल्ड है, जबकि ऐसा नहीं है, कमी है संसाधनों की, हमारी सोच की कि भाई नहीं, भाई होना चाहिए, बेटा होना चाहिए. इस सोच को त्यागे तो हमारी जनसंख्या भी नियंत्रित होगी, मानसिकता भी नियंत्रित होगी, रोजगार भी मिलेंगे, शिक्षा भी मिलेगी, और स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, सड़क परिवहन, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेगी. इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर.

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: साथियों, जब भी भारत की बात आती है तो भारत की शान, पहचान, आन बान सब देखे तो संस्कृति और परंपराओं से लोगों को लगता है सिर्फ यही है, बल्कि ऐसा नहीं है। और इसकी जो आन बान शान पहचान है वो कहीं ना कहीं लोक कलाओं से भी होती है। देश के अलग अलग राज्यों की अपनी एक खास कला होती है जो वहाँ के इतिहास और संस्कृति को संजोए रखती है, हमारे तक दर्शाती है। ऐसी एक अनोखी कला है ऊस्ता कला।
6: बिल्कुल, ऊस्ता कला राजस्थान, खासकर बीकानेर की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। यह अपनी बारीक नकाशी, सुनहरी सजावट और उभरे हुए डिज़ाइन के लिए जानी जाती है। इसे देखने वाला हर व्यक्ति इसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता।
5: बात बीकानेर की होती है तो बीकानेर में हम देखते हैं आम बोलचाल में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलते रहते हैं उस्ताद उस्ताद। तो उस्ताद से ही जो फारसी शब्द है उससे ही निकला है ऊस्ता शब्द, जो काफ़ी रोचक है, जिसका सीधा अर्थ देखें तो होता है किसी कला में निपुण या विशेषज्ञ व्यक्ति। और समय के साथ यही नाम इस कला की पहचान बन चुका है।
6: बिल्कुल दोस्तों, इस कला की शुरुआत कई सौ साल पहले मानी जाती है। उस्ता कला की सबसे बड़ी खासियत है इसमें सोने की वर्क, उभरी हुई डिज़ाइन और बेहद बारीक हाथ की कारीगरी। लकड़ी, ऊंट की खाल, धातु, कांच और दीवारों जैसी कई सतहों पर यह कला बनाई जाती है।
5: और कला, ये जो कलाकृति तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, कई दिन लगते हैं और कई बार तो काफ़ी सप्ताह भी लग जाते हैं। पहले डिज़ाइंस तैयार किए जाते हैं, फिर इनमें उभरा हुआ काम किया जाता है और अंत में सोने की महीन परत और रंगों से उसे सजाया जाता है।
6: आज भी बीकानेर के कई कलाकार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। नई पीढ़ी तक इसे पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि यह विरासत आने वाले समय में भी सुरक्षित रह सके।
5: वैसे देखे साथियों तो लोक कलाएं सिर्फ सजावट का माध्यम नहीं होती, बल्कि वे किसी क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली की कहानी भी सुनाती हैं। ऊस्ता कला भी बीकानेर की एक ऐसी ही पहचान है।
6: दोस्तों, आज के समय में इस कला से बनी पेंटिंग्स, सजावटी वस्तुएं, ज्वेलरी बॉक्स, फोटो फ्रेम और कई हस्तशिल्प उत्पाद देश विदेश में पसंद किए जाते हैं। इससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी मिलता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आगे बढ़ती है।
5: और जब हम देखें कि भारत में हमारे लोकल फॉर लोकल या भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की बात करते हुए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसी

कलाओं का संरक्षण और सम्मान करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अपनी लोक कलाओं को सहेजना सिर्फ परंपरा को बचाना नहीं है, बल्कि उन कलाकारों के वर्षों के समर्पण और मेहनत का सम्मान करना भी है।

0: पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: शारदा, ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि भारत का हर राज्य अपनी किसी न किसी खास पहचान के लिए जाना जाता है। कहीं ऐतिहासिक धरोहर है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं बर्फ से ढके पहाड़। लेकिन अगर कोई राज्य एक साथ समुद्र, पहाड़, हरियाली और शांत प्राकृतिक वातावरण का सुंदर संगम हो तो वो है केरल।
2: बिल्कुल सही कहा दिव्या तुमने। यही वजह है कि केरल को अक्सर गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बैकवाटर्स, समुद्र तटों और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है।
1: और केरल की सबसे खास बात ये भी है साथियों कि जहाँ एक ओर अरब सागर की नीली लहरें हैं तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं। यही अनोखा मेल इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास पर्यटन स्थल बनाता है और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच ले आता है।
2: बिल्कुल, अगर समुद्र की बात करें तो कोवलम, वर्कला और बेपोर जैसे बीच पर्यटकों में लोकप्रिय है। वहीं मुन्नार, वोयनॉर्ड और थिक्केडी जैसे पर्वतीय क्षेत्र अपनी ठंडी जलवायु, चाय के बगानों और मनमोहक दृश्यों के लिए जाने जाते हैं।
1: और बात करें केरल के बैक वाटर्स की तो ये सबसे अलग और शांत पहचान है। शांत जल मार्गों से निकलते हुए हाउस बोट्स का अनुभव पूरी दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। और प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ केरल अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक नृत्य कथकली और युद्ध कला, कराली पायतू और आयुर्वेद के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति और प्रकृति ने एक दूसरे के साथ खूबसूरती से जुड़ी हुई जो सामंजस्यता दिखाई है वो हर कहीं नहीं दिखने को मिलती।
2: बिल्कुल सही कहा दिव्या तुमने। वो साथ ही साथ केरल मसालों के खेती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे लैंड ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इस राज्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
1: और अगर देखा जाए साथियों तो केरल सिर्फ घूमने की जगह नहीं है बल्कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने का संदेश भी देती है। जहाँ समुद्र और पर्वत एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होते हुए भी अद्भुत सामंजस्य बनाकर जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं। और यही कारण है कि केरल हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, सांस्कृतिक विरासत हर किसी के मन में एक अलग छाप छोड़ देती है। और सच भी कहा गया है साथियों, जब समुद्र की विशालता और पर्वतों की ऊंचाई एक साथ दिखाई दे तो प्रकृति का बहुत सुंदर रूप देखने को मिलता है। और अब हम भी सुन लेते हैं एक प्यारा सा सुंदर सा गीत।
3: कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: दिव्या, आज के समय में ऊर्जा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। घरों की बिजली हो, उद्योग हो या फिर परिवहन, हर क्षेत्र में ऊर्जा बहुत ही जरूरी है। लेकिन बढ़ती हुई ऊर्जा की जरूरत के साथ ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भविष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होगा।
1: देखो शारदा, जहाँ सवाल होते हैं वहाँ जवाब भी स्वतः ही मिल जाता है, और इसी सवाल का जवाब भी है हमारे पास। तो इस सवाल का जवाब है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति से प्राप्त होती है और बार बार इस्तेमाल करने पर भी जल्दी समाप्त नहीं होती।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसके प्रमुख स्रोत हैं सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी, जल ऊर्जा हाइड्रो एनर्जी और बायोमास ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं।
1: और आज दुनिया भर में देश है जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसी पारंपरिक ऊर्जाएं स्रोत सीमित हैं और इनके अधिक उपयोग से प्रदूषण भी बढ़ता है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है।
0: सही कहा दिव्या। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो हमारा देश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े स्तर पर सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं।
1: देखो, राजस्थान का नाम आते ही साथ ही सबसे पहले तेज धूप याद आती है, और यही धूप आज बिजली बनाने के लिए एक अच्छा और बड़ा संसाधन बन चुकी है। सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है बल्कि लंबे समय तक ये किफायती भी साबित होती है।
0: दोस्तों,

0: सर्व करणीय ऊर्जा का एक और बड़ा लाभ यह है कि इससे कार्बन एमिशन कम होता है, यानी वातावरण में प्रदूषण कम फैलता है और जलवायु परिवर्तन की गति को भी कम करने में मदद मिलती है।
1: इतना ही नहीं है शारदा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कई जगह नए रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल बनाना, उन्हें स्थापित करना और उनकी देख रेख करना, इन सभी क्षेत्रों में युवाओं के लिए एक नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
0: बात तो बहुत सही कही तुमने दिव्या, हालांकि इस क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी तो हैं, जैसे शुरुआती लागत अधिक होना या मौसम पर निर्भरित, लेकिन नई तकनीकों की मदद से इन चुनौतियों का समाधान भी लगातार खोजा जा रहा है।
1: और कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है साथियों कि आने वाले वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाली है। इसीलिए आज से इसके महत्व को समझें, इसे अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके।
0: आखिरकार ऊर्जा की जरूरतें तो बढ़ती रहेंगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे।
1: और शायद यही संदेश नवीकरणीय ऊर्जा हमें भी देती है कि प्रकृति से उतना ही लो जितना उसे सुरक्षित रखते हुए लिया जा सके, क्योंकि सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा ही स्वच्छ भविष्य की सबसे मजबूत नींव होती है।

0: खोया खोया से ध्यान भटका होगा तो खोने से नहीं चलेगा, वापस मिलने से काम चलेगा साथियों। तो अब हम जान लेते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए उन दोनों सवालों के जवाब। हमारा पहला सवाल आपसे ये था कि भारत की जनगणना 2027 में पहली बार किस सामाजिक पहलू का भी डेटा एकत्र किया जाएगा, तो वो है जाति का विवरण।
1: दोस्तों आज का दूसरा सवाल था, हाल ही में किस मंत्रालय ने इंडिया AI मिशन का नेतृत्व किया, तो इसका जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
0: साथियों इन दोनों सवालों के जवाब तो हमारे युवाओं को बेहद ही ईजी लगे होंगे क्योंकि आज का युवा जागरूक भी है। तो जागरूक युवा के लिए रोजगार सूचना में आज हम ले आए हैं बैंकिंग सेक्टर से एक शानदार भर्ती का नोटिफिकेशन। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा क्रेडिट ऑफिसर GBO स्ट्रीम के विभिन्न पदों पर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत कुल 779 रिक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 30 जून से, जिसकी अंतिम तिथि है 26 जुलाई।

0: इस प्यारे से गीत के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आज्ञा दीजिए आपकी युवा साथी दिव्या को
1: और शारदा नैन को।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रही थी दिव्या सारस्वत और शारदा नैन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, हमारी इस सभा में आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती। ये कार्यक्रम हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

श्रोताओं, हमारी इस सभा में ग्रामीण श्रोता अपना सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसमें आज फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम होगा, गूंजे गांव गुआड़। कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे। आज का कार्यक्रम ये पेश करेंगे बजरंग सारस्वत और डॉक्टर भरत कुमार चाजड़ा। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। इस कार्यक्रम की 152वीं कड़ी आज आप सुन पाएंगे। वाचन स्वर श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का होगा। श्रोताओं, सुगम संगीत का आप आनंद ले सकते हैं रात्रि 7:45 बजे। और लोक संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 बजे पर।

हमारी इस सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:05 पर और रात्रि 9:15 पर। शाम 6:05 पर फिल्म संगीत में आज होंगे शीर्षक गीत और शीर्षक होगा जिंदगी।

0: आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के CEO बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी

0: अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस समय 6:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शीर्षक गीत, और आज का शीर्षक है जिंदगी।

पहला गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में, फिल्म का नाम आनंद, गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी। कार्यक्रम का लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म का नाम है जागते रहो, मुकेश का स्वर है और गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सलील चौधरी।

0: आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था दिल तुझको दिया। गीतकार संगीतकार राजेश रोशन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत में शीर्षक गीत, और आज का शीर्षक है जिंदगी। तो आइए सुनते हैं इस जिंदगी

आप सुन रहे थे कुमार सानू के स्वर में साथी फिल्म का ये गीत। इस गीत के बाद लीजिए सुनिए ये अगला गीत उदित नारायण के स्वर में। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: आप सुन रहे थे उदित नारायण के स्वर में राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का शीर्षक गीत ये कार्यक्रम आप यहीं समाप्त होता है। आज का शीर्षक था जिंदगी। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। शाम के इस समय 6:30 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर वार्ता की। इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में हुआ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना यानी 35,000 करोड़ रुपये करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए, इनमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र शामिल हैं।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का समय कोलैब का समय है और इसके लिए किसी देश की जनसंख्या नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना अहम है।
2: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और न्यूजीलैंड के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केकड़ी क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केकड़ी के कृषि उपज मंडी परिसर में हुए समारोह में श्री शर्मा ने 1,258 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नसीराबाद केकड़ी देवली 4-लेन सड़क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। इससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है।
3: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है। आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन Phase 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर है कस्बे जिनमें आवश्यकता है उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से

0: कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों जान गंवाने वाली 5 प्रसूताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। जन सहयोग से इकट्ठा की गई 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दी गई। उधर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हाल ही में कुछ प्रसूताओं की मौत के मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि प्रभावित ऑपरेशन थिएटर की जांच की जा रही है और इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में रेफर होकर आने को मौत का कारण बताया। उधर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह का संक्रमण सामने नहीं आया है। मामले की उच्च जांच के लिए जयपुर के 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है।
2: चारों प्रकरण है, कारण जानने

0: सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में रेफर होकर आने को मौत का कारण बताया। उधर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह का संक्रमण सामने नहीं आया है। मामले की उच्च जांच के लिए जयपुर के 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है।
1: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस हैं उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि तबादलों के दौरान ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन रखा गया है, जिससे किसी भी स्थिति में गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि DEO, प्रिंसिपल और लेक्चरर सहित हजारों शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हालांकि तृतीय श्रेणी के सामान्य स्थानांतरण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1ली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। प्रदेश में कल से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक 2-2 पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनके माध्यम से मां और बच्चे के कल्याण के लिए 2 संतानों में उचित अंतर रखने और परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं जनसंख्या स्थायित्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बांसवाड़ा को वर्चुअल रूप से ये सम्मान दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौड़ ने गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच करवाने और समुचित परामर्श लेने का आग्रह किया।
2: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
0: डीग जिले में कृषि पर्यवेक्षकों की टीम खाद और बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण कर रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश मान ने बताया कि खरीफ सीजन में खाद और बीज की बढ़ती मांग के बीच काला बाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज से राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भाग ले रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के सार्वजनिक

जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सेवा, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सम्मेलन में सुशासन, नैतिक नेतृत्व और समाज हित से जुड़े विषयों पर विभिन्न सत्रों में मंथन किया जा रहा है। पाली जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन और राजकोप सिटीजन ऐप की भी जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ और उत्पीड़न होने पर सजग रहें और पुलिस को सूचित करें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्पटन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। सीरीज में इंग्लैंड 3-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया। कहा, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले महीने की सबसे प्रमुख घटना पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होना रही। राज्य सरकार की पहल पर कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच सहमति बनने के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया तथा गंभीरी नदी और नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा। बाद में तकनीकी कारणों से जल प्रवाह कम रहने पर किसानों ने फिर से आंदोलन किया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। जल संरक्षण को लेकर चलाया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी पूरे महीने जिले भर में चर्चा में रहा। अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, श्रमदान, पौधरोपण, फार्म पौंड निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने जिले का दौरा कर अभियान की समीक्षा की। वहीं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म पौंड का भूमि पूजन कर किसानों से जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर भी पूरे माह आकर्षण का केंद्र रहे। इन शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व, भूमि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, जलदाय, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पात्र लोगों को पट्टे दिए गए और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने जिला मुख्यालय के शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। राज्य सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, जिसका अवलोकन जनप्रतिनिधियों और आमजन ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय पर

0: आयोजित समारोह में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1555 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक मदर लैब शुरू की गई है, जहां 148 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत घर घर जाकर ORS और जिंक की गोलियां बांटी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बड़ी संख्या में लोगों ने इन योगाभ्यास में भाग लिया और नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ। एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में न्यायालय ने 2 आरोपितों को 7-7 वर्ष की कठोर कारावास अर्थ दंड दिया। जिले में बीते माह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी हुई। ईद उल अजहा का पर्व जिले भर में श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन चैन तथा भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं अधिक मास के चलते जिले के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। निर्जला एकादशी पर भी कई धार्मिक आयोजन हुए। करौली की अरुणा शर्मा ने श्री अन्न पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाई है और जिले भर में अपनी नई पहचान बनाई है। इस इकाई के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और मोटे अनाज के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुगुनो कर और 35,000 करोड़ रुपया लेवल ताई ले जावनु तय करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केकड़ी हलका माय विकास रा 1,258 करोड़ रुपया काम शुरू कीना और पूरा भिया काम जनता ने सौंपिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान, गांवई हलकान स्कूला माए शिक्षकां नी कमी नी आवण दी जावेला। और विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर माए राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखीचियो। जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य माथे जोर। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन सागे दोनों देशों बीच सहयोग मजबूत करण रे बारा माय चर्चा कीनी। ई पाछे जारी करी जा भेला बयान माय दोनों नेता रणनीतिक भागीदारी बढ़ावण रो स्वागत कीनो। वह कहो कर रिकॉर्ड समय माय करी जो भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौतो दोनों देशों सारू नुआ मौका बनावेला। ई करारों साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुणो कर करीब 35,000 करोड़ रुपया लेवल ताई ले जावण माई मदद मिलेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री न्यूजीलैंड यात्रा रे दौरान रक्षा कारोबार टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट सरीखा न्यारा न्यारा हलका माए दोनों देशों बीच 18 करार मत सही करी जी।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ऑकलैंड माए बस्योड़ा भारत रा लोगा नहीं संबोधित कीना। वह कहो के मौजूदा दौर एक दूजा सागे मिलर काम करन रो है और इन सारू किणी देश री आबादी नहीं बल्कि जनता रा भलारी भावना खास है।

0: भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
1: इमोके न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री लक्सन दुनिया माय भारत रा बढ़ता रुतबा प्रधानमंत्री मोदी री अगुवाई और न्यूजीलैंड रा विकास माय वठ बस्योड़ा भारत रा लोगारा योगदान री सराहना कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अजमेर जिला रा केकड़ी हलका माय विकास रा 1258 करोड़ रुपया रा खर्च वाला न्यारा न्यारा कामा री शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। श्री शर्मा नसीराबाद केकड़ी देवली फोर लेन सड़क परियोजना रा पहला दौर रा काम री नींव रखी। आ परियोजना 3 दौर माय पूरी भैला। ई मौके राखी जिया जलसा माय मुख्यमंत्री कहो के सरकार जनता री जिंदगी आसान बनावन री लगातार कोशिश कर रही है।
2: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है, आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
1: कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लारला दिना जापारे दौरान जहाँ 5 महिलाओं की मौत हो गई ही, वहाँ परिवार वाला ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला माली मदद री रकम रा चेक सौंपया। आ परिवार ने संबल देवन सारू जनता री मदद सहयोग राशि भेड़ी कर और संबंधित परिवार ने 5-5 लाख रुपये की मदद दी रीजी। ई बीच भीलवाड़ा और बांसवाड़ा रा सरकारी अस्पताल माय ऑपरेशन जापो करावन पाछे लाड़ला दिना कुछ लुगाइयां री मौत रा मामला माय अस्पताल प्रशासन किनी लापरवाही इनकार कीनो है। भीलवाड़ा माय महात्मा गांधी अस्पताल रा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण गौड़ बतायो के शंका वाला ऑपरेशन थिएटर री जाँच करी जा रही है और जापारी भगत इस्तेमाल करी जिया इंजेक्शन रा नमूना ही जांच सारू भेजी जिया है। वह जापारे दौरान गंभीर हालत माय रेफर भैर आवन ने मौत रो कारण बतायो। बांसवाड़ा रा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव बतायो कि शुरुआती जांच माय किणी भांत रा संक्रमण री ठा नी पड़ी है। वह बतायो कि मामला री आला दर्जा री जांच सारू जयपुर रा 5 डॉक्टरां री टीम बनाई जी है।
3: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस हैं उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी।
1: प्रदेश में उद्यमिता ने बढ़ावो देवन सारू चलाई जा रही रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना रो 12वां दौर 15 जुलाई ने शुरू भेला। इना तेज 100 औद्योगिक हलका में 5,000 औद्योगिक और लॉजिस्टिक प्लॉट निवेशकों सारू मुहैया कराया जावेला। रिकोरा प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला बतायो कि ई दौर री ई लॉटरी 31 जुलाई ने निकाली जावेला। वे बतायो कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना रा तहत हाल ताई रा 11 दौर में 1,844 प्लॉट रो आवंटन करियो जा चुको है। आरे जरिए राज्य में 18,000 करोड़ रुपये बत्तों निवेश करियो जा सकेला और 37,000 नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इसा गई आप माने वेबसाइट newsonair.gov.in माथे इस समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि तबादला रे दौरान गांवाई और शहरी हलकां री स्कूलां माय शिक्षकां रो संतुलन बनाई चियो है ताकि गांवां री स्कूलां माय अध्यापकां री कमी नी वे। अलवर माय खबर नवीसां सागे बातचीत करता थकां दिलावर कहो कि शिक्षा विभाग माय तबादला रो काम पूरो वे।

0: विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर माए राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखी जियो इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के इस समय 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत के अंतर्गत फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं श्री बजरंग सारस्वत और डॉक्टर भरत कुमार चाजड़ा।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम री उडीक राखणिया सगळा हेताळू भाई बहना ने घणा घणा राम राम सा। मैं हूँ आपरे सागे बजरंग सारस्वत और मारे सागे है
1: भरत कुमार जाजड़ा।
0: भरत भाई आपने भी मारा घणा घणा राम राम।
1: भाई लोगा थाने भी राम राम और बजरंग भाई ने भी घणा घणा राम राम। और आज देखो सिंजर भगत जो चौपाल रे मैंने बैठा हाँ तो आज खाली हाथ कोनी ऐसा। आज घना सारा कागज ये है जका हाथ रे मैंने है और सागे सागे आपरे जके ई मेल आउड़े है वो भी मारखने पिटारो है बीरो भी। तो आज सगली फरमाइशा थारी है भी घणी घणी सर शामिल करने की कोशिश कर सा। और इरे अलावा आपने मैं वो भी बता दें कि आज रे कार्यक्रम में गूंजे गाँव से संबंधित अगर आप रे कोई फरमाइश हुए और आप चाहो कि आज ही शामिल हो जाए तो आप मैंने हाथों हाथ ईमेल कर सको। और मारो ठिकाणो नोट कर लो सा ग्रामीण जगत बीकानेर @gmail.com ई मेल रे माथे आप मैंने आप रो संदेश भेज दो आपरी फरमाइश भेज दो और आप रो जगह नाम सुनाना भी भेज दो मैं आज ही शामिल करने की कोशिश कर सा। और अगर आप मैंने कागज लिखनो चाहो तो आउन नाला जो का कार्यक्रम है भी मैंने शामिल हो जैसी ठिकानो जो है बार
0: बिल्कुल सा। तो आप माने पोस्ट कार्ड लिख सको हो आप रे दाई रो जिको गीत लो है भी रिपेली होली गाउन नाला कलाकार रो नाम और फिर गीत दाई करने नाला भाई बहना रा नाम और बारे गाँव या शहर रो नाम आप माने इन पते ठिकाने भेज सको सा। कार्यक्रम गूंजे गांव गुवाड़ ग्रामीण जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बीकानेर इन पते ठिकाने माथे आपरे कागदारी माने घणे मान उड़ीक रेसी।
1: बिल्कुल सा। और देखो मेल भी घणा आउड़ा है कागदिया भी घणा आउड़ा है पण पहली देखो मैं शुरुआत करूँ आपरे गूंजे गांव गुवाड़ कार्यक्रम में एक इसे मेल सु जो को कोई अबार बोलता बोलते आए हुए। तो यूं शू शुरुआत करूँ ताकि आपने भी वो संदेश मिले है कि अगर अबार भी आप रखने मौको है कोई मान आप मेल करो तो बजरंग भाई जो है आप मेल माथे तुरंत ही प्रतिक्रिया कर सी और आपने जल्दी जल्दी बात सुना सी।
0: बिल्कुल सा। तो आप मेल रो माने घने मान उड़ीक रे सी।
1: ठीक है। और अब जो है एक मैं मेल बाँचू हूँ आप देखो अबार हाथों हाथ ही मेल आया है गांव 5 MD पत्रोड़ा अनूपगढ़ राजस्थान सु। और फरमाइश करने वाला है मंगल जनागल रोशनी जनागल अंकुर जनागल इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल।
0: भरत भाई इन गीत ने दाई करे है कमला कॉलोनी बीकानेर सु सुभाष खत्री तरुण खत्री वर्षा खत्री और जॉय खत्री। अमर सिंहपुरा बीकानेर सु इन गीत ने दाई करे है सिकंदर अली खान।
1: इन अलावा एक मारखने मेल जो है दिंद्रा यो हो आज और भेजनड़ा महाराष्ट्र से नलेश्वर गांव सु है और लिखनड़ा है PS नवानकर निर्मला नवानकर विशाल नवानकर और नारायण इंगले सोपान ताइडे और आशीष मुहरेकर।
0: ओ पेलड़ो गीत है आप सुना ला इन गीत ने बीकानेर सु दाई करे है असगर अली पंजाबगीर अनवर अली पंजाबगीर मुमताज सोनू टीना वहीदा सहीदा ताहिरा एम ए पंवार खातून बेगम और पोती जोइया।
1: इन अलावा जिला मुरादाबाद और ग्राम दुल्हापुर सु माने मेल भेजी है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोन

0: सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और यारा साथी।
1: देखो साहब, बीकानेर राज्य का सुनने वाला भाई लोग है बे खास विशेष रूप से उड़ीक राख रिया है। पोस्ट कार्ड आयोड़ा है मोकड़ा हमारे हाथ में, ऐसा आगलो पोस्ट कार्ड भेजो है वल्लभ गार्डन बीकानेर सुन की सारू एल सी सहजादा, कमला देवी पंवार, राजकुमार पंवार, गीता रानी, मयंक पंवार, अनन्या पंवार, सत्यनारायण, राजा पंवार, लालचंद पंवार और वंशिका पंवार।
0: इर अलावा गांव जाखोत राजस्थान सू माने मेल भेजो है संबुदयाल खटक, एक कागज भी भेजो है संबुदयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक और यारा साथी।
1: हनुमानगढ़ राजस्थान सू इन गीत ने दाय करे है रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, आहिल खान और जीशान खान।
0: तो सा यहाँ सगड़ा री फरमाइश रमत है प्रस्तुत है पहलू गीत, लो बादली बरसे क्यों नहीं है रामेश्वर लाल जी आवाज में।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
4: वाह सावरत जी, संदेशा सुने और संदेशा उपिली सांतरसो गीत सुनायो, बादली बरसे क्यों नहीं है। भरत भाई, अपर अटेन क्षेत्र में बादली है जी, की वास्तव में कोनी बरस रही नहीं। बाकी दूजा क्षेत्र में बिरखा हो रही है, सांतरी हो रही है पूरे राजस्थान में, पूरे देश रे मायने। और अपर अठेरा लोग है वे उड़ीक राख रहा है कि अपर अठे बादली कद बरसेला।
5: बिल्कुल सही बात है। और देखो, बादली तो बरस बरसी बरसी और बरसी जल्दी बरसी अड़ी सोचा। और अब देखो बारी है भाई लोग ना, और मेल बांचन री मारखने मेल है। कस्बा बरड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा सू रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकिरत और गुरशब्द सिंह राहुल।
4: मोहम्मद सरबास श्री डूंगरगढ़ सू मोहम्मद असगर पंवार, मोहम्मद अकबर पंवार, राबिया मुन्नी, बरकत हाजन, गुलजार अजीज और असगर भाई।
5: मालियान सरधना, मेरठ सू अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। बागपत उत्तर प्रदेश सू संजय ढींगिया, नमन अपार अरियारा साथी।
4: गंगाशहर बीकानेर सू मंजुल मुकुल वर्मा, प्रेमलता, शैलजा, हेम पुष्प, सुमन, सुशीला, हेमंत, युवान और शिव कुमार जी वर्मा।
5: कमला कॉलोनी बीकानेर सू नियमित श्रोता है सुभाष खत्री। इर अलावा 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर सू पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी वंदना, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रज्ञा अरियारा साथी।
4: नापा सरसू गीत ने दाय करे है प्रयागराज ओझा, राजकुमार, घनश्याम और पवन ओझा। नापा सरसू ही गोपाल राम ओझा, आनंद ओझा और प्रिंस ओझा।
5: इर अलावा माने पद्मा टोकीज नेपानगर सू सुदर्शन साहा, पल्लवी साहा।

0: प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, बंगलाबेन, राजेंद्र शाह, अरियारा साथी।
1: देशमुख सूं ओ पोस्ट कार्ड हमारे हाथ में आयोड़ो ऐसा भेजन आला है, गोपाल दान, भोम दान और प्रकाश दान।
0: अच्छा बजरंग भाई, एक बात देखो, आप गाँव सु जगह परदेश जाप रहे और लंबे बगत तक रहे, माने गाँव री बाई सकल याद रहे जकी बे छोड़ गया, उन नाले में छोड़ गया तो खेत बुझुको है, उन नाले जड़ो दिखी, सियाले छोड़ गया तो वो सियाले जड़ो याद आए, नहीं जने दूसरे।
1: सच्ची बात है,
0: है नी? कारण वो है कि जकी चीज आप देखा या जकी चीज मन में बाई देखो है, कणी कणी कई चीज कोई चीज आप मन में गणी हुए तो हर जगह बाई बाई दिखती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो आई बात है, हाणे हरेक भाई रे मन रे मैंने एक ही है कि काली कलाण उमड़े है और घनी सारी
1: पड़े। बिल्कुल सर। तो काली कलाण देखा तो सोचा
0: अरे गीत मन में आ रही है।
1: अरे वाह वाह,
0: देखो काई ठाई गीत तो सुन बरसात आ जाए।
1: हाँ बात भी सही है। तो औसा सुना आप अगलो गीत, काली कलाण उमटी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
3: तो भरत भाई संदेशा सुने, संदेशा पहली अच्छो गीत सुनियो काली कड़ायण ओम टियाड़ा।
4: और देखो मेल घना ही है, जो कभी थोड़ा सी मेल और बाँचूँ। भोपालगढ़ राजस्थान सूँ धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार। मुजफ्फरपुर बिहार सूँ आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद। टाउनशिप सेक्टर 8 भुलाई सूँ अनुश्री, प्रदीप, यामिनी और वीणा कालिया। इर अलावा सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान सूँ रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान। और गोविंदपुरा नीम का थाना सूँ दातार सिंह, संगीता, तुषार और रिंकी से कहावत।
3: श्री कोलैज जी बीकानेर से गीत ने दाय करे है फूसराज सोनी, सूरज प्रकाश सोनी, धर्म सोनी, लालचंद सोनी और चंद्रकांता सोनी। मूंडसर जिला बीकानेर से गीत वास्ते माने कागज भेजो ऐसा भवरलाल ओझा, महेश कुमार, गोविंद ओझा और दिनेश ओझा।
4: और यहाँ सगले फरमाइश मत है पसंद ऐसा ओ गीत तड़ लो।

0: भाई लोग हाँ देखो जहाँ ही माने थोड़ा सो मौको मिले कोशिश करा कि घणा घणा ईमेल जका है शामिल कर सका तो गांव से स्वास जिला झुंझुनू सु मारखने मेल है नेकीराम रेवाड़ संतोष और ममतारू कृष्णा पार्क दिल्ली सु सुखविंदर सिंह जोड़ा सीटी दीवाना गांव गोविंदगढ़ माझीवाली करणपुर राजस्थान सु राजू टूटेजा खुशदिल उर्मिला टूटेजा गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी करणपुरी स्माइल टूटेजा लक्ष्य जानी
1: जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर सु गीत ने दायक रहे अशोक कुमार शाही श्रीमती संतोष शाही राजश्री और गौरव शाही ग्राम पोस्ट मऊ तहसील मांगरोल जिला बारांसू श्रवण लाल योगी श्रीमती गायत्री योगी सोनिया

0: उमा, मयंक और पूर्व योगी परिवार।
1: गोविंदगढ़ माजी वाली करणपुर राजस्थान से जो को आप कागज पढ़ियो हो, मेरे सागे सागे ही मेल में एक नाम और लिखोड़ा है, पायला किला जिला बाड़मेर से मोहनलाल प्रजापत माणक दरिया और कुमारी ऊषा। नोहर जिला हनुमानगढ़ से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, शीशपाल सुथार, पवन कुमार, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री और महेंद्र सुथार। गांव खिंदासर तहसील कोलै से कानाराम चौहान।
0: गांव घमंडिया तहसील सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढूकिया।
1: इर अलावा बेताब रेडियो श्रोता क्लब बिहार से वसीम अकरम, यामिनी खातून, गुड़िया खातून, अरियारा साथी, सगड़ा जना सुनना चाहिए है वो आग लोगी तड़लो
0: सुनाओ सा।

0: माह के पहले और चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: पहलो गा मेल रे मैंने माखने एक मेल है झज्जर हरियाणा सु बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया और पानीपत सु नरेश मल्होत्रा। गांव पजोनिया जिला जानलोन उत्तर प्रदेश सु सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, दरियापुर बाबली सु गजानन येले और नवदीप येले। इर अलावा चोटाला हरियाणा सु दारा पंडित बुलबुल जोशी और दीवांशु जोशी।
2: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश सु मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी और मोहिनी। खरगोन रोड गोगा वांसु नजरू, सलीम डल्ला, यूनुस सनावदी और गब्बर बाजरी। बरवट बकालसु नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे।
1: और ऐसा सब सुनना चाहिए है और आग लोगी तड़ दो।

0: और भाई लोग अब एक कार्यक्रम रो छेकड़ दो तो रो आ गयो है और अठे जाऊँता जाऊँता मैं आपने मेल बाँच दूँ दादरी गेट भिवानी छूँ कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण मेहरा कपिल मेहरा कुणाल मेहरा हरियाणा साथी सनावद मध्य प्रदेश हूँ दिलीप मालाकर जितेंद्र मालाकर योगेश मालाकर मुस्कान मालाकर और सुनीता मालाकर खंडवा मध्य प्रदेश हूँ कैलाश दीपक समर और सगड़ो फूलमाली परिवार
1: ओंकारेश्वर सूँ गीतने दायकर है निशा सैनी देवकी बाई और दुर्गा ताई बुलढाणा महाराष्ट्र सु गीत वास्ते कागज भेजो ऐसा नरेंद्र नरवाड़े ज्योति नरवाड़े आकांक्षा नरवाड़े और आकाश नरवाड़े गोवर्धन रोड मथुरा सु गीत ने दाय करे है महेंद्र यादव कौशल और नरेंद्र यादव
0: और यहाँ सगला री फरमाइश रमत है प्रस्तुत है वो हरजस

0: गणपतलाल डांगी और साथी री आवाज रे मैंने आभार आप हर्जत सुनियो सा और अब घड़ी सर करिए कि विदा लेने वक्त आ गयो है।
1: तो आज रो ग्रामीण जगत कार्यक्रम अठाई संपन्न करने रे यज्ञा देव सा आप रे साथी बजरंग सारस्वत
0: और भरत कुमार जाजड़ा ने
1: घना घना राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण जगत कार्यक्रम के अंतर्गत फरमाइशी पत्रों व ईमेल पर आधारित लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे गांव गुआड़। इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे श्री बजरंग सारस्वत और डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 7:45 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास रचित ये रचना बालकृष्ण वैष्णव के स्वर में। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अनूप चलूटा को।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अनुराधा पोडवाल के स्वर में अगली भक्ति रचना।

अनुराधा पोडवाल के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि

के इस समय 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की 152वीं कड़ी। वाचन स्वर है श्री महेश उपाध्याय का, प्रस्तुति श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का। तो आइए सुनते हैं बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण।

0: बीकानेर दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं स्थानीय नागरी भंडार के महाराजा नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में। श्रोताओं, 5 जुलाई का वो दिन था जब युवा साहित्यकार डॉ. नमामि शंकर आचार्य की लघु कथाओं की पुस्तक उत्तर पात्र का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर आचार्य मनोज दीक्षित। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी, अध्यक्षता की डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य ने। पुस्तक पर विचार रखे युवा साहित्यकार श्री हरीश बी शर्मा ने। कार्यक्रम का संचालन किया संजय आचार्य वरुण ने। आइए आपको लिए चलते हैं महाराजा नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में, जहां स्वागत भाषण देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बीकानेर के उपनिदेशक श्री हरिशंकर आचार्य ने कहा।
1: राजस्थानी रा चावा ठावा लिखारा बड़ा भाई आदर जोग डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य जी री राजस्थानी लघु कथावारी पोथी उत्तर पात्र रहे लोक निजर उत्सव के मुजब मंच पर विराजमान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय रा आदर जोग कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार आदर जोग मधु आचार्य जी, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी रा सचिव रेवड़ा और राजस्थानी रे प्रत्येक कार्यक्रम रमाने राजस्थानी रमाने यहाँ पर बात राखणिया आदर जोग डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य जी। सेवों पहला तो मैं आप तीनों मोत्या मूंगा अतिथियारो हृदय गहराई सु आभार स्वागत और अभिनंदन करूं। आप रे आवण सु कार्यक्रम ई कार्यक्रम रो रंग सवायो हुए है शांत रो कार्यक्रम अठे आप राख्यो है। नमामि जी ने आशीर्वाद देवण रे सारू आप सह लोग पधारे हो। मैं आप सब रो बिना नाम लिए क्योंकि अठे जितना भी लोग बैठा है अपने आप में एक संस्था है, आप अपने क्षेत्र रा महारथी है। मैं सब रो स्वागत और अभिनंदन करूं।
0: उत्तर पात्र पुस्तक के लेखक डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य का परिचय देते हुए श्री सुरेश सोनी ने साहित्य की परिभाषा और लेखक का परिचय काव्य रूप में प्रस्तुत किया।
2: साहित्यकार कौन हुए इन मत है अलग अलग लोग आपरी अलग अलग परिभाषा में दी है। मारी परिभाषा आ है कि साहित्यकार वो है जगह में दो चीज अनिवार्य रूप नहीं हुए और दो चीज अनिवार्य रूप हुए नहीं हुए जगह में आ है कि एक तो भी में आत्ममुग्धता नहीं हुए और एक भी में अहंकार नहीं हुए। नमामि जी में दोनों चीजें को नहीं और दो चीज होनी चीजें मऊ पहली चीज आया कि भी मैं लेखन लग हुए सिर्फ लेखन नहीं हुए लेखन रो लग हुए और दूसरो विनम्रता हुए। नमामि जी में दोनों चीज है। डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य पुत्र श्री जय शंकर आचार्य शिक्षा एमए हिंदी प्रथम श्रेणी राजस्थानी प्रथम श्रेणी एलएलबी पीएचडी आजरी राजस्थानी काण्या माय नारी चेतना महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से राजस्थानी साहित्य में पहले पीएचडी धारक राजस्थानी साहित्य में नेट परीक्षा उत्तीर्ण एवं राजस्थान सरकार द्वारा उस्ता आर्ट में प्रशिक्षण। इतना पढ़ने के बाद मैंने जो इन पे कविता लिखी है इसका पहला अंतरा आपको सुनाता हूं कि आभे जू थारी ओढ़ खान आपकी पहचान आकाश के समान है। आभे जू थारी ओढ़ खान थारे गुण रा गण नी छाना। जिस प्रकार शंकर भगवान के गुण होते हैं गण होते हैं उसी प्रकार आपका गुण एक सिंगल इकाई के रूप में नहीं है, आप में कई गुण हैं और उन गुणों को हम गण कह सकते हैं।
0: और

0: अब वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, पुस्तक उत्तरपात्र का लोकार्पण। ये लोकार्पण सम्मानित मंच द्वारा किया गया, शंखनाद भी किया गया।
1: बहुत ही हरख रो माहौल है, बहुत ही आनंद रो और बहुत ही उमाव रो माहौल है कि आज किनी व्यक्ति रो रचना कर्म लोक ने निजर हो रही है, लोक ने अर्पित होने जा रही है और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण अपारे बीच में उपस्थित हो रहा है। आपा भी भागशाली यहाँ के कोई रचना कर्म अपारे सामने आज लोकार्पित हो रही है।

0: पुस्तक पर चर्चा की युवा साहित्यकार श्री हरीश बी शर्मा ने।
1: राजस्थानी लघु कथा मारो एक नुवो अटाण पगो थियो। राजस्थानी लघु कथा वाली पोथी उतर पातर ने पढ़ता थका इन बात सु मैं सहसु पहली नहचो करनो चाहूं कि काई लघु कथाकार ने लघु कथा वाला आसा पासा ठा भी है कनी। इनरी वजह भी है क्योंकि कई रचनाकार तो आथून सुहाई साहित्यरी घणखरी विधावा ने अंगेजता थका सोचा बिचारी की कमी करे। अंग्रेजी रे नाव रो हिंदू तर्जुमो कर और ठोक दे बिना इन बात पर विचार करे कि अनुवाद रो भी एक अनुशासन हुए। दाखले सारू अंग्रेजी में जके ने शॉर्ट स्टोरी कहवा उन्हीं ने जे लघु कथा में समझ ला तो कबाड़ो होनो तय है। शॉर्ट स्टोरी पेटे अबार इतरो ही कहसूं कि इना रो लघु कथावां सु कोई तल्लो बल्लो नहीं है। दूजी बात लघु कथावां रो किणी कथा वाचन री परंपरा सु भी जुड़ाव नहीं है। खास तौर सु वे कथावां जकी एक सूत्र में चालती रहे और उनारे कथ्य ने परोटन सारू रेफरेंस रा जुगाड़ करण वास्ते कथावाचक क्षेपक रो इस्तेमाल करे वे लघु कथावां नहीं हुई सके। लघु कथा मारो आप रो निर्वाणो अस्तित्व हुए। लघु कथारी आप री सीम हुए मर्यादा हुए जको इनने नहीं समझ पावे वो कम शब्द में या तो ठिगने डील में कोई गद्य ने मांड दे पण वा लघु कथा नहीं हो सके। ठिगने डील रे गद्य पर चाहो तो लिख दो लघु कथा पण वा लघु कथा नहीं हो सके। दोगलो रूप कहानी मर्दारी लंपट गिरी ने अर्थावे उत्तर पत्र कहानी आपरे ये लागे फांस रो बदलो चुकान वास्ते घर में डैन री मृत्यु री उडीक राकणाई लुगाई री कहानी है। नमामी जी आप री कथावा में जिनावर री बात करे इनारी कहानियां में जीव आपस री में बात करे ओ प्रयोग सातरो बनियो है। कौमी एक तारा तागा बुने भूख गरीबी और फोड़े सु जूझती जून रा अखाणा आवेरे।
0: और अब बारी थी स्वयं लेखक के विचार सुनने की। उत्तर पातर पुस्तक के लेखक डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य ने अपनी लेखनी के बारे में विचार रखते हुए कहा।
2: आज के उत्तर पातर में लिखी है समाज रे माने जिको मैं देखियो है परिवार में जिको देखियो है संबंध रे माने जिको है बिने ही मैं लिखने रो प्रयास करिए। मने अड़े सो छोटा छोटा छोटा छोटा मने अड़े क्या है कि मने प्लॉट मिली है और बिने मैं बिने माथे में लिखने रो प्रयास करिए। मैं संजय जी सो काफ़ी प्रभावित हुई संजय पुरोहित जी सो क्योंकि मैं जब लिखना शुरू करिए तो कई बार फेसबुक रे मायने आप ती रचनाएं तो बे रचनाएं मैं लिखता हूँ 10 लेने बे लिखता 8 लेने बे 8 लिखता मैं 8 लिखता तो बे 4 लिख देता मैं कहती छोटी छोटी लेकिन जब भी पूछे तो भाई मैंने गाइडलाइन करी और बीरो कारण है क्या उत्तर पाते सामने आप रे प्रस्तुत। समाज ने मायने विद्रुपताएं बहुत फैली उड़ी है मतलब संबंध जिका है बे कई बार निभाई जो कोनी ढोईजे है तो भी संबंधों ने मैं क्या है कि अठे लिखने रो परोटन रो प्रयास करियो हूँ तो उत्तर पातर है जीवन आज थारे है आज मारे है जीता पगों थे चढ़ना है बीता पगा थे उतरना है ऐ सब चीजें लेर मेरे मना आप पढ़ोला तो आपने जरूर दाय आवेला।
0: आयोजन के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री मधु आचार्य आशावादी ने लघु कथा क्या होती है की बात करते हुए कहा
3: कि शॉर्ट स्टोरी भी एक परंपरा चाहे पाश्चात्य साहित्य में ही और चाहे बाद में भारतीय साहित्य में आई लेकिन लघु कथारी कोई एक समृद्ध परंपरा साहित्य में बहुत बहुत बाद में आई बहुत बाद में आई। एक्चुअल में अखबारारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि स्पेस ने किया भरे जावे तो भी स्पेस ने भरण खातर लघु कथा मारो एक जन्म हुयो। मैं लघु कथा खातर जी को अबार तक विधान बनयो बहुत लंबो चौड़ो विधान को नहीं रो एक बात कहनी चाहूँ कि कई बार लघु कथा एक रिएक्शन बनर रह जावे केवल एक प्रतिक्रिया कोई एक छोटी सी बात

0: देखिए और मेरे पर एक रिएक्शन दियो, लोग मैंने लघु कथा मान ले। कई बार एक टिप्पणी मैंने भी लोग लघु कथा मान ले। जब मान लो कोई पैसे वालों आदमी कोई एक बनावटी बात करे, आप एक टिप्पणी एक शब्द में करे करो, बिना भी लोग लघु कथा मान ले। लेकिन जब लघु कथा रे साथ कथा शब्द जुड़ियोड़ो है, तो आपने कथा रे इथिक्स ने और कथा रे मानदंड ने और बेरी परंपरा ने मानना ही पड़सी, नहीं तो लघु कथा बने को नहीं।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने पुस्तक के अलावा गंग नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने के आयोजन की जानकारी भी दी।
2: लघु कथाओं का जो एक संसार है, ये बाद में जरूर उभरा, लेकिन प्रभावी बहुत हुआ। प्रभावी इसलिए हुआ क्योंकि ये छोटे में बड़ी बात कह देने की जो कला है वो आसान नहीं होती। बहुत बड़ी बात को कहने में बहुत समय लगता है, लेकिन एक बड़ी बात को एक छोटी सी बात से कह दिया जाए, एक छोटी सी कथा से कह दिया जाए, वो आपको अंदर तक प्रवेश कर जाती है। ये बातें हिंदी साहित्य में और राजस्थानी साहित्य में भी धीरे धीरे उभरी, लेकिन हैं बहुत प्रभावी और आज की तारीख में बड़ी उपयोगी भी हैं। अगर राजस्थान कल जाना जाएगा तो वो राजस्थानी से ही जाना जाएगा, किसी अन्य भाषा से नहीं जाना जाएगा, और इसके प्रति हमें आग्रह अपने करने पड़ेंगे। हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। 1927 में गंग नहर में पानी शुरू हुआ था, 2027 आ रहा है। उस 100 वर्ष के कारण हम लोग ने कोशिश की है कि महाराजा गंगा सिंह का जितना भी काम है उस काम को एक संग्रह करके एक वांग्मय के रूप में प्रकाशित करा जाए उसका कार्य। तो एक प्रयास अपने शहर के लिए, अपनी यूनिक कल्चर के लिए अगर हम कुछ कर पाएंगे तो हम लोग अपने आप को कृतार्थ समझेंगे, अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमामि शंकर जी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई।
1: कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता श्री सत्य प्रकाश आचार्य ने राजस्थानी शब्दों के लुप्त होने पर चिंता जताई और कुछ राजस्थानी शब्दों की चर्चा भी की।
3: जो उत्तर पात्र माने जी के पुस्तक रो पोथीरो जी को शीर्षक है, वो मेरे मायने उत्तर पात्र आई कहानी है, लघु कथा है, और बे लघु कथा मारे एक शब्द आए हाथी। मैं समझू घना घना लोगों ने ठाकुर के हाथी कहीं हुए, हाथी पाती हाथी कहीं हुए। आप वो शब्द बहुत जो कई शब्द लुप्त हो रहे हैं, ये बोल चाली भाषा रामायण है व्यवहार रामायण लुप्त हो रहा है। ऐसा ऐडा ऐडा शब्द है जिसका लुप्त हो रहा है। और हाथी कहीं वे हाथी समाज में एक बहुत पुरानी परंपरा थी। घर में कोई एडो नुक्त हो तो और बेरे बाद रामायण घर के पास पड़ोस में अपने रिश्तेदार बैठे कुछ मिठाई भेजा करता हाथी, मैंने कहता हाथी। तो और जिको शीर्षक है हाथी, अरे मैंने उत्तर पात्र लगे एक पहला कोई महिला देवे और बाद अपेक्षा रखे कि माने भी पाछी हाथी मिले, तो वह हाथी रहा उत्तर पात्र, मैं पाछी दे पर उत्तर पात्र होगी। मैं समझूँ शीर्षक और मैंने जी लघु कथा वाला जी का शीर्षक है वह भी बड़ा मतलब ईसा शब्द है कि जिकेरे मायने लुप्त होता जा रहे कई शब्द। तो 84 लघु कथा वाई मायने हैं। पहलो यही है निर्जला, अपन ग्यारस वेस निर्जला ग्यारस और खूब मेड़ो पर सब परिचित है। अपनो परायो पहली तारीख अटाड़ो, अब अटाड़ो शब्द हरेक ने समझ में कोई नहीं कि अटाड़ो कहीं हुए, लेकिन यहाँ लघु कथा मेरे पूरी अटाड़ो मतलब कूड़ो करकट कह सको, घर माने कोई बेकार चीज पड़ी वो अटाड़ो, मारे हिसाब से मैंने अटाड़ो कहवा। अदितवार बाबेरी ओट बदलाव भगत समय ने भगत कहवा बैठक बाजरी की रोटी बाल मजदूरी बरस गांठ बंबोड़ दोष किड़रो फदर पंच। अब आप फदर पंच आते अपन एक समझ में आए कि उलाडेर बुआ कह सका दूसरे शब्द में जी को फदर पंच के उलाडेर बुआ बनोड़ो आ गयो, तो मैं समझू इस शब्द फोकटरो माल घड़ियो गड़ेरी हाड गड़ेरा हाड गऊ गिलास। अब गऊ गिलास कहने के बहुत बड़ी बात है कि गऊ गिलास समझ में गाय वास्ता पर जी को रखा मैंने गऊ गिलास कहे। इबादत जतन जुगाड़ येरो हेलो।
1: श्रोताओं अब हम आपको लिए चलते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर। जी नहीं, हम आपको उड़ीसा नहीं ले जा रहे हैं, हम बीकानेर के उस जगन्नाथ मंदिर की बात कर रहे हैं जो बीकानेर का संभवतः एकमात्र जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर राजकीय अणचाबाई अस्पताल के ठीक सामने स्थित है। ये मंदिर पौराणिक है, यहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ के आयोजन होते हैं। बीकानेर दर्पण में इसकी चर्चा करने का कारण यह है कि इन दिनों विशेष प्रकार के आयोजन की तैयारी चल रही है, साथ ही भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के आयोजन भी

0: रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम आपको वहीं लिए चलते हैं और बात करते हैं वहीं के मंदिर के पंडित श्री श्रवण कुमार पांडे से।
1: जय जगन्नाथ। मैं जगन्नाथ मंदिर पुजारी श्रवण कुमार पांडे। अभी भगवान जगन्नाथ जी की अनसर लीला चल रही है, इसमें भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। भगवान का जन्मोत्सव होता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को भगवान ने 108 कलश से स्नान किया था, उसके बाद में भगवान अनसर काल मतलब भगवान बीमार हो जाते हैं, जो क्वारंटाइन बोलते हैं उस टाइप से बीमार हो जाते हैं भगवान, बुखार आ जाता है। तो 15 दिन तक भगवान की सेवा सुशंसा होती है, उसमें भगवान के काढ़े का भोग लगता है, सुबह शाम में दूध के काढ़े का भोग लगता है, फल फ्रूट का भोग लगता है और चावल दाल का भी भोग लगता है कंटिन्यू। ये चलता रहता है, 15 दिन तक चलेगा। और इसमें पहले भगवान 5-7 दिन गणवेश में दर्शन देते हैं, जो कि अभी हो रहे हैं, और उसके बाद में 8-9 तारीख से 8-9 जुलाई से भगवान के दर्शन बंद हो जाएंगे, एकदम पर्दा हो जाएगा भगवान की। फिर भगवान 15 तारीख को नवयौवन दर्शन देंगे, उसमें भगवान का अच्छा श्रृंगार होगा। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाएगा, जो 12 बजे तक खुला रहेगा, शाम को 5 बजे खुलेगा, जो रात को 8-9 बजे तक खुला रहेगा। अगले दिन फिर भगवान की रथ यात्रा की तैयारी होगी। रथ यात्रा में बड़ी भगवान की आप लोगों को आमंत्रित हैं, आइए, बड़ा मेला लगता है। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं, जो कि 16 जुलाई को निकलेंगे। भगवान के प्रांगण बड़े नीचे प्रांगण में बड़ी आरती होगी, महाआरती बोलते हैं जिसको। उसके बाद में 6:30 बजे के आसपास रथ रवाना किए जाएंगे रतन बिहार जी की ओर। भगवान 9 दिन तक रतन बिहार जी में रहेंगे, 24 तारीख को वापस आएंगे। इस 9 दिन के बीच में भगवान की वहीं 9 दिन जैसे कई लीलाएं होती है भगवान की, उस लीला में एक वैसे भगवान, कई लोग कहते हैं भगवान ससुराल जाते हैं, कई लोग भगवान कहते हैं कि मौसी के यहाँ जाते हैं, ये सब भगवान की अलग अलग लीलाएँ हैं। भगवान एक्चुअल में बाहर निकलते हैं, जो लोग मंदिर में नहीं आ सकते भगवान के बाहर हाथ लगा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं भगवान के टच कर सकते हैं, भगवान के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, उसी लिए भगवान बाहर निकलते हैं। और जगन्नाथ जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो साल में 2 बार बाहर निकलते हैं, स्नान पूर्णिमा को और रथ यात्रा में। ये रथ यात्रा में भगवान निकलते हैं और 24 को रथ यात्रा वापस आएगी। इसी टाइम शाम को 6:30 बजे वहाँ रतन बिहार जी में बड़ी आरती होगी, उसके बाद में शाम को रथ रवाना होकर रात को 8-9 बजे तक जेल रोड स्थित मंदिर में आएगी 24 तारीख को।
0: अगर हम ये कहें कि देश का सबसे बड़ा मंदिर तो उड़ीसा में जो है जगन्नाथपुरी में है, लेकिन ये देखा जाता है कि वहाँ की जो परंपराएं हैं उसी को यहाँ बीकानेर में भी पूरा जो है किया जाता है। तो आप बताएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक भगवान को क्या होता है प्रोसेस उठाने का? जगह
1: सुबह सुबह भगवान की मंगला आरती होती है, जैसे जगन्नाथपुरी में सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है, उसी प्रकार यहाँ पे अभी 5:30 बजे मंदिर खुलता है। और रतन बिहार जी में होंगे तो सुबह 5 बजे के आसपास मंदिर खुलेगा। जो फंक्शन जैसे वहाँ पे चंदन यात्रा होती है तो यहाँ भी चंदन यात्रा होती है, और डेली जैसे वहाँ पे चंदन लगता है भगवान के, यहाँ भी लगता है। भगवान के जैसे चावल दाल का भोग वहाँ लगता है महाप्रसाद का, वैसे ही यहाँ सुबह एक टाइम चावल दाल का भोग लगता है, शाम को दूध का भोग लगता है, बाद में प्रसाद वितरित किया जाता है। जो प्रोग्राम वहाँ होते हैं बड़े स्तर पर, वही छोटे स्तर पर यहाँ होते हैं, क्योंकि छोटा मंदिर है, छोटे स्तर पर यहाँ होते हैं।
0: इस मंदिर का इतिहास अगर आप बता पाएंगे?
1: ये मंदिर 1836 में बना हुआ है, उससे पहले हमारे पूर्वज जगन्नाथपुरी से ये मूर्तियाँ कंधे पर लेके आए थे, और कंधे पर लेके आए थे तब यहाँ के राजाओं को सपना आया कि भी हमारे ब्राह्मण आए हुए हैं तो उनको नगर प्रवेश दो, तो उस टाइम बारिश नहीं होती थी बीकानेर में, तो नगर प्रवेश दिया तो यहाँ पे बारिश हुई 3 दिन तक लगातार। उसके बाद में भगवान राजाओं ने रतन सिंह जी, डूंगर सिंह, तत्कालीन राजा जो भी थे, उन्होंने उनको तीनों ब्राह्मणों को नगर प्रवेश दिया। उसके बाद में यहाँ बारिश हुई तो कुछ टाइम तक राजाओं ने इन मूर्तियों को लालगढ़ पैलेस में विराजमान करवाया, और उसके बाद में कुछ समय जूनागढ़ में विराजमान कराया। उसके बाद में 1837 में ये मंदिर बना के रानीसा भटियाणी जी ने, जो कि जगन्नाथ जी की पूजा अपने घर पे किया करती थी पहले, वो पूजा हमको भेंट कर दी और ये मूर्तियाँ यहाँ स्थापित कर दी। आज भी वो पूजा हमारे मंदिर में स्थापित है, चांदी का सिंहासन है, उनकी दीवी फोटो, उस फोटो की आज भी पूजा हमारे परिवार द्वारा कंटिन्यू की जा रही है।
0: यहाँ मैं देख रहा हूँ निज मंदिर में 2 मूर्तियाँ जो है गणेश जी की है दोनों तरफ, और एक जो है काले रंग में, एक श्वेत रंग में, उसका कोई राज?
1: ये गणवेश होता है, इसमें कोई पुजारी था तो गणवेश में वो भगवान के दर्शन करना चाहता था, भगवान नहाने के बाद में जब बीमार हो जाते हैं तो वो 4-5 दिन के लिए गणवेश में रहते हैं। जगन्नाथपुरी में भी गणवेश में दर्शन देते हैं, उसके बाद में भगवान के दर्शन नहीं होते, तो वही परंपरा यहाँ पे निभाई जाती है। जो व्हाइट वाले हैं वो बलभद्र जी हैं, तो ब्लैक वाले हैं वो जगन्नाथ जी।
0: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं जगन्नाथ जी का एक भजन जो इस मंदिर में बजाया जाता है।

0: श्रोताओं, दिनांक 10 जुलाई यानी कल ही कवि एवं कथाकार श्री राजेंद्र जोशी की हिंदी काव्य कृति एक रात धूप में, जी हाँ, ये पुस्तक का नाम है एक रात धूप में, के असमिया अनुवाद का लोकार्पण स्थानीय सूचना केंद्र के सभागार में किया गया। उल्लेखनीय है कि डिब्रूगढ़ असम के शिक्षा अधिकारी और साहित्यकार दुर्लभ चेतिया ने यह अनुवाद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक और राजभाषा संपर्क अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर आचार्य से हमने बात की, तब आपने बताया।
1: देखिए, राजेंद्र जोशी जी जो है वो हिंदी और राजस्थानी के ख्यातनाम लेखक हैं। उनकी 30 से अधिक किताबें उन्होंने लिख दी हैं, संपादित कर दी हैं। ऐसी ही एक किताब जो साल 2016 में उनकी आई थी, ये हिंदी काव्य संग्रह था एक रात धूप में। सूर्य प्रकाशन मंदिर ने इसको प्रकाशित किया था और इसका पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद हुआ था जो रजनी छाबड़ा ने किया था, और कल ही इसका असमिया भाषा में जो अनुवाद होने के बाद जो पुस्तक जो प्राप्त हुई थी उसका सूचना केंद्र सभागार में इसका विमोचन हुआ। और असमिया भाषा में जो इसका अनुवाद किया है वो डिब्रूगढ़ के रहने वाले दुर्लभ चेतिया शिक्षाविद भी है, साहित्यकार भी है, उन्होंने किया है। और ये जो पुस्तक की अगर हम बात करें तो इस पुस्तक के मूलतः तीन खंड है। पहला खंड है बात जो बात है, दूसरा सूखी पत्तियां और तीसरा मेरे हिस्से के आकाश। इन तीनों खंडों में मिलाकर लगभग 70 कविताएं हैं जिनमें विविध विषयों पर है, चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे संबंधों की बात हो, चाहे उतार चढ़ाव की बात हो, चाहे सामाजिक विद्रूपताओं को सामने लाना और उनको दूर करने की बात हो, शहर की पीड़ा हो, और इसके अलावा आलोचकों पर जो आलोचक कई बार जो बात करते हैं उनको भी इन पुस्तकों में आईना दिखाया गया है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले अंग्रेजी में और उसके बाद अब असमिया में इसका जो उसका अनुवाद हुआ है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा राजेंद्र जोशी जी की अपन बात करें तो उनकी मौन से बत कही जो पुस्तक है, जो कविता संग्रह था, वो उर्दू में भी अनुवाद हो चुका है उसका, और प्लॉट नंबर 203 जो उनका कहानी संग्रह है उसका अनुवाद पंजाबी में हो चुका है। तो कुल मिलाकर मैंने अपनी बात में भी यही कहा था कि जो भाषाएं होती है, ये जो साहित्य होता है, ये हमारे जो भाषाओं की विविधताओं भरा देश कहते हैं, तो भाषा और साहित्य जो एक दूसरे को जोड़ने का जो काम करता है वो साहित्य बहुत अच्छी तरह से करता है। और ये काम राजेंद्र जोशी जी और साहित्य पूरा जगत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। चूंकि मैं राजभाषा संपर्क अधिकारी भी हूँ तो मुझे जब कभी हिंदी और इससे जुड़ी भाषाओं का काम करने का मौका मिलता है तो मैं इसमें प्राथमिकता रखने का प्रयास करता हूँ। और ऐसा ही सूचना केंद्र में बीकानेर के जो प्रबुद्ध साहित्यकार हैं और जो प्रबुद्ध साहित्य प्रेमी हैं उनकी मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ, तो मैं इसके लिए राजेंद्र जोशी जी को भी शुभकामना देता हूँ और आपका भी मैं आभार इसके लिए व्यक्त करता हूँ।
0: कवि कथाकार श्री राजेंद्र जोशी ने अपनी काव्य कृति की रचना यात्रा पर प्रकाश डालते हुए आकाशवाणी को बताया।
2: यह मेरी अनुवाद की पुस्तक है, मेरी हिंदी कविता संग्रह है एक रात धूप में, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। और करीब 2-2.5 साल पहले हमारे एक साहित्यकार मित्र हैं जो आसाम के डिब्रूगढ़ में रहते हैं, उनको जब मैंने ये किताब दी तो उनका फोन आया कि राजेंद्र जी ये कविताएं अच्छी है और आम आदमी के करीब की कविताएं हैं और इसमें आम आदमी की पीड़ा भी झलकती है और आम आदमी प्रकृति के कितना नजदीक रह सकता है उस इन कविताओं से सीखा जा सकता है। तो मैंने कहा आपका बहुत आभार। उन्होंने कहा नहीं, मैं इन कविताओं का असमिया में अनुवाद करना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दी। तो मेरे लिए ये खुशी का अवसर था, मैंने उन्हें

0: तुरंत स्वीकृति दे दी, लेकिन उसके बाद में वो उन्होंने केवल शब्द से अनुवाद नहीं किया, भावनात्मक अनुवाद किया है, भाव है इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अनुवाद में को लेकर के आप देखेंगे कि एक तो वो अनुवाद होता है अनेक बार जो जैसा है वैसा शब्द केवल अनुवादित हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें जो असमिया संस्कृति है, इस शब्द के साथ असमिया संस्कृति किस तरीके से संबंध रखती है, वह सारी बातें आई हैं। और यह धीरे धीरे उन्होंने किया, बहुत आराम से किया। 10 साल बाद इसका कविता संग्रह का अनुवाद, 10 साल बाद किसी भी किताब का अनुवाद आना, ये खुशी की बात तो है ही है। साथ ही साथ आप देखिए कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र राजस्थान और असम के लिए भी ये उत्साह करने की बात है। मैं इस कविता संग्रह को लेकर के वैसे भी उत्साहित रहा हूँ, क्योंकि इसकी कविताएं आम आदमी के नजदीक है, ये प्रकृति की कविताएं हैं, आम आदमी के पीड़ा की कविताएं हैं। तो मुझे, और इसका लोकार्पण आज सूचना केंद्र में हुआ है।
1: श्रोताओं, स्वच्छता किसको पसंद नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे आसपास साफ सफाई रहे। हमारे बीकानेर को साफ सुथरा रखने की हम सब की जिम्मेवारी है। साथ ही कुछ गैर सरकारी संगठन नगर निगम के साथ मिलकर भी शहर को साफ रखने की मुहिम चलाते हैं। बस आवश्यकता है हमारे सहयोग की। बीकानेर के जूनागढ़ के एक तरफ प्राइवेट बस स्टैंड हुआ करता था, वहां सब्जी के ठेले आज भी लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत कचरा रहता था, लेकिन आज यहाँ स्मार्ट कचरा पात्र लगने से ये स्थान पूरी तरह साफ सुथरा रहने लगा है। अधिक जानकारी के लिए उस स्थान पर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ कार्यरत कर्मचारी मनोज कुमार पांड्या से।
2: जूनागढ़ के पास देख रहा हूँ कि एक कचरा पात्र लगा हुआ है, और अलग तरह का मॉडर्न कचरा पात्र हम कह सकते हैं ये लगा हुआ है। और यहाँ गार्ड साहब बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। गार्ड साहब, आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम मनोज कुमार पांड्या है सर।
2: जी मनोज जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक समय था जहाँ यहाँ पर बहुत ही कचरा रहता था, और गायें या दूसरे पशु भी जो है उस कचरे को खाते भी थे, इससे भी जो है पशुओं को भी नुकसान होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ नगर निगम बीकानेर की ओर से और एक निजी संस्था है उसकी ओर से भी यहाँ पर ये कचरा पात्र लगाया गया है। आप यहाँ गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? ये कचरा पात्र जो है किस तरह से काम करता है, या अगर आप बताना चाहें लोगों को तो आप किस तरह से बताएंगे कि इसका उपयोग कैसे होता है?
3: ये कचरा पात्र जो बना हुआ है नागरिकों की सुविधा के लिए बना हुआ है। यहाँ पास में सब्जी मंडी के गाड़े और लगते हैं, दूर दूर से लोग थैली के अंदर, एक पॉलीथीन के अंदर जो कचरा लेके आते हैं उसी को हम इसके एंटर करने देते हैं। खुला कचरा इसमें हम नहीं डालने देते हैं। ये पब्लिक के लिए सुविधा है, पहले से कहीं ज़्यादा ये सड़कें, यहाँ पे आम सड़क साफ दिखने लग गई है।
1: ये था आज का बीकानेर दर्पण। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की, और वाचक स्वर था महेश उपाध्याय का। अगले अंक तक अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे थे बीकानेर की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का साप्ताहिक कार्यक्रम बीकानेर दर्पण। आज आपने सुनी 152वीं कड़ी। वाचन स्वर था श्री महेश उपाध्याय का। प्रस्तुति थी श्रीमती पुनीत बिश्नोई की और संयोजन श्री अमित सिंह का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 होते हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भीकारे का ढोला मरु चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का ये कार्यक्रम। लोक संगीत में आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी ये लोकगीत बद्री व्यास और माल्या दास के स्वर में।

0: लोक कलाकार बद्री व्यास और माल्या दास के स्वर में इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के इस समय 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश

0: अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 9 3 6 2 8 1 7 9 3 0 8 4 9 1 5 5 2 3 7 1 4 और 8 4 3 3 4 5 2 0 4 1 4 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा।

0: अभिप्राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र

0: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो तीन दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away.

आप सुन रहे थे तलत महमूद के स्वर में। ये गीत फिल्म का नाम था एक गांव की कहानी। शैलेंद्र के बोल थे और संगीत सलील चौधरी का। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: चौथे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिए कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में राम और श्याम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये आखिरी नगमा मुकेश के स्वर में। फिल्म का नाम है रात और दिन। हसरत जयपुर के बोल है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे मुकेश के स्वर में रात और दिन। फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी के बोल और संगीत था शंकर जयकिशन का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के इस समय 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम संस्कृति भारती।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का

0: ये मंत्र कहता है आपो ही स्था मयो भुवा, यानी जल ही सुख समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर। ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक कर

0: हिल्किय्याह सेवक ताम्र विशोई ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
1: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे

0: हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भूई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुभ दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भोरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्र पट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो कि रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक पथी पांचन होता है, आम, केला, अनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का कोरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदीघोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और शिव मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते। निश्चानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर

अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं। और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीक्षिता भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेषण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदूरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम को देखे दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर ले तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर ले वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। वैसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास

0: विश्वास से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कटिहारा से आया हूँ।
2: ऊर्जा आम ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है,
1: वो भी हमारे कटिहारा में होता है, हमारे गांव में।
2: और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
3: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
4: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, रामकेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी, इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
5: है। ये आम कुछ खास है। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारे ये हमारे ध्रुव उहे के जन्मे हो। उस दिन हम अटारी में रहे, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम सनुकलाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग ले चला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए की जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे है

आए हूँ, बाटी भोरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के गनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाईस द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और एला लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगा हुए, तो सुने पर आते की वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा इमें बैठ। कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आँखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ।

गदगद करते थे। ऐसे लगते थे कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हम का ऐसे लागते, मोरमन लागते भाई। ये बच्चा कथा में हम डूब के उन मन ले सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उमन रोना शुरू कर देते। हम उतना सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते ते हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजे, घर से हमला सब लोग के सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है, आगे बढ़ मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप मैं भीम समझने लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रेंगता हूँ। तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: कर सकत रहे हूँ, ओला ऐती तेती बहका सकत रहे हूँ, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे में हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाथे, आ तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गार्डर है ते गार्डर में बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मने गुरु बन के काम करो, तो आपके समय में मोला बहुत है अच्छा लागते, लेकिन मोला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरुला भेटे हूं और नरसिंह ला भेटे हूं खंभा मा, बुईर बिनत सौरी ला भेटे हूं क्यों टल भेटे हूं गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात

0: मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की, लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम संस्कृति भारती। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के इस समय 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

0: भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट।

डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Riti Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद ने। डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this, we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम, जी हाँ, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के इस समय 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

0: गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic two-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Visakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and